एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

0: सुरेश वाड़कर के गाए इस भजन के साथ ही आज का आस्था के स्वर कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: नमस्कार किसान साथियों, मैं भगवंत राव।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आस्था के ईश्वर, आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन। आलेख डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन का, वाचक स्वर रवि सोनी का।
1: मनुष्य के जीवन में सत्य के प्रति निष्ठा होना जरूरी है। यदि सत्य न हो तो जीवन में आनंद ही न हो, आत्मा भी नहीं हो और परमात्मा भी नहीं हो। सत्य सार्वभौमिक स्वीकार्य होता है, इसलिए जो इसे नकारता है वो भी जानता है और मन ही मन मानता भी है कि सत्य है। सत्य शब्द सत से बना है, जो उसके अस्तित्व का सूचक है। सत्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जो

0: भेद के लिए कहा जाता है वो सत्य है। सत्य वही है जिसका अस्तित्व है। संसार में झूठ का कभी अस्तित्व नहीं रहता। यदि झूठ चलता भी है तो वो सत्य के नाम पर चलता है। झूठ के पैर नहीं होते और सत्य कभी पंगु नहीं होता। जीवन का आधार सत्य है और जीवन का लक्ष्य भी सत्य है। परम सत्य आत्मा है जो हमारे अंदर विद्यमान है। उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए जो हमने झूठ के अनेक आवरण चढ़ा रखे हैं उनका विसर्जन करना होगा, उन्हें हटाना होगा। सत्य से जीवन प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और अहिंसा की रक्षा होती है, क्योंकि अहिंसा और सत्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नीति कहती है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। आज हम सत्य के भी प्रिय नहीं हैं और अप्रिय सत्य बोलने से भी नहीं चूकते हैं। ऐसे समय में सत्य की चर्चा और भी आवश्यक हो जाती है। हम सत्य के राही बने, सत्य के विश्वासी बने, इसी में जीवन की सार्थकता है। आज इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग क्षण भर में सत्य को झुठला देते हैं, किंतु सत्य को झुठला पाना आसान नहीं होता, क्योंकि जिसके लिए सत्य को झुठलाया जाता है वही सत्य के रूप में सामने आ जाता है। जैसे हमारे अंदर की वासनाएं कहते हैं कि सत्य की गति मंद अवश्य होती है, किंतु लक्ष्य तक पहुंचने में वही सहायक होता है। झूठ की गति तीव्र भले ही हो, किंतु उसका असमय में ही अवसान होना निश्चित होता है। हमें अपने जीवन में सत्य को इसलिए भी अपनाना चाहिए क्योंकि सत्यवान व्यक्ति सृजेता होता है। उसकी दृष्टि सृजन की ओर होती है। वो अपनी सृजना के माध्यम से सृष्टि को कुछ ना कुछ लौटाता है जो उसने सृष्टि से लिया है। जो ही व्यक्ति झूठ बोलता है वो सृजन के संसार से स्वयं को अलग कर लेता है। जिस तरह त्याग और दान के बिना व्यक्ति और समाज का जीवन नहीं चलता है, उसी तरह सत्य के बिना भी व्यक्ति और समाज का काम नहीं चलता है। सत्य का पक्षधर व्यक्ति कहता है और मानता भी है कि जो बुरा है उसे त्यागो और जो अच्छा है उसका दान करो। हमारा और आपका धर्म भी यही कहता है। राग द्वेष का त्याग और औषधि, ज्ञान, अभय और आहार का दान करना इसी सत्य को पाने का एक सशक्त माध्यम है। इसके बिना ना जीवन चल सकता है, ना धर्म पल सकता है, ना साधना हो सकती है और ना ही साध्य की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि जहाँ राग होता है वहाँ दान नहीं होता और जहाँ दान होता है वहाँ राग नहीं होता। दान में स्व पर कल्याण की भावना निहित है। सुपात्र की पहचान कर दान देने से गृहस्थ सत्कर्म में प्रवृत्त माना जाता है। घर की शोभा दान से है, अतः दान अवश्य देना चाहिए। इसमें मात्रा को नहीं भावना को देखा जाता है। जैसी भावना वैसा ही फल। सद्भावों पूर्वक कम दान का भी वृहत फल प्राप्त होते देखा जाता है। अतः निरंतर मन में दान की भावना रखते हुए शक्ति और संयोग मिलने पर दान देना चाहिए। सत्य हमें सदाचरण की ओर ले जाता है, हमारे जीवन को भी सार्थक बनाता है। अतः हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो सत्य के विरुद्ध हो।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन का, वाचक स्वर रवि सोनी का। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

क्योंकि ई रासायनिक प्रदूषण ख कम करज न मिट्टी का स्वास्थ्य ख सुधारज। इन्हीं खेती में किसान न ख रासायनिक उर्वरक न कीटनाशक पर कम खर्च करनु पड़ज जेकासी उनकी लागत कम हुई जाज। प्राकृतिक खेती किसान न ख अपनी आवश्यकता का लेना स्थानीय संसाधन को उपयोग करने में सक्षम भी बनावज जेकासी वो बाजार पर निर्भरता कम करी सकज। बात करा प्राकृतिक खेती का प्रमुख घटक न की त एमा बीजामृत ई बीज ख उपचारित करना का लेन उपयोग किया जाने वालो एक प्राकृतिक उत्पाद छे। जीवामृत ई एक तरल खाद होएज जी पौधा का लेन पोषक तत्व को काम करज। साथज घन जीवामृत ई एक ठोस खाद छे जी मिट्टी की उर्वरता ख बनावज। आच्छादन ई मिट्टी ख ढकना का लेन फसल अवशेष को उपयोग छे। साथज वाष्पा ई मिट्टी में नमी न हवा की मात्रा ख बनाया रखना की प्रक्रिया छे। फसल विविधीकरण एमा विभिन्न प्रकार की फसल उगाणु जी मिट्टी का स्वास्थ्य न पोषक तत्व की उपलब्धता का बेहतर बनाना

0: मिट्टी की उर्वरता ख बनावज। आच्छादन ई मिट्टी ख ढकना का लेना फसल अवशेष को उपयोग छे। साथज वाष्पा ई मिट्टी में नमी न हवा की मात्रा ख बनाया रखना की प्रक्रिया छे। फसल विविधीकरण एम विभिन्न प्रकार की फसल उगाणु जी मिट्टी का स्वास्थ्य न पोषक तत्व की उपलब्धता का बेहतर बनाना में मदद करज। प्राकृतिक खेती मिट्टी की भौतिक जैविक न रासायनिक गड़बड़ी ख कम करज। प्राकृतिक खेती करने वाला किसान अपनी भूमि की जुताई कम करी देज या कुछ शर्त का तहत मिट्टी का कटाव की समस्या ख रोकने का लेन एक साथ जुताई करनु बंद करी देज जी अंततः मिट्टी का संरक्षण ख बढ़ावो देज। मिट्टी ख वनस्पति या प्राकृतिक सामग्री से ढकी ख रखा न भूमि ख जोतना की बजाय प्राकृतिक कृषि पद्धति में मल्चिंग जल प्रतिधारण खरपतवार दमन न कटाव की रोकथाम का माध्यम से मिट्टी में सुधार जैसा लाभ प्रदान करना न भूमि ख पूरा वर्ष हरा भरा रखना जैसा लाभ प्रदान करना का लेन कवर फसल लगाणु शामिल छे। साथज जितनो संभव हो सका पशु नख खेती में एकीकृत करा न उपलब्ध पशुधन खाद सहित गाय को गोबर मिट्टी में मूल्यवान पोषक तत्व जोड़ी सकज जेकासी उर्वरक की आवश्यकता कम हुई जाए न स्थाई चरागाह बड़ी मात्रा में कार्बन न पानी ख रोकी सकज जेकासी कृषि उत्सर्जन न प्रदूषित अपवाह में कमी आवज। न आज की कृषि चर्चा में बस इतरोज राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा प्राकृतिक खेती, वाचक स्वर था माधुरी सेन का।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: फोन करें गीत सुने।
2: सर फोन लगा लगा के सर जी मैं पसीने में तर बतर हो गया हूँ, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है।

0: बाहर ना निकले।
1: अपने श्रोताओं के संग दिलचस्प बातें, मधुर गीत, सुनिएगा जरूर इस रविवार प्रातः 10:05 पर। फोन करें, गीत सुने। मुझे कह

0: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना?
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

हमारे श्रोता इस कार्यक्रम में सुबह 7 बजे सुनिए ग्राम जसवाड़ी के श्रोता दुर्गेश नागनपुरे से बातचीत। शास्त्रीय संगीत में 7:20 पर सुनिए पंडित जसराज का गायन, इनसे सुनिएगा राग पुरिया। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल आप सुनेंगे सुबह 7:30 से। सुगम संगीत में 8:15 पर अशोक खोसला की गाई चंद गजलें आप सुनेंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर।

जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से सुबह 10 बजे फोन करी गीत सुनी। यह कार्यक्रम होगा सुबह 10:05 से। प्रस्तुति होगी मनीष शर्मा की। 10:35 पर बाल जगत कार्यक्रम में सुनिए ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसान और बचाव के तरीके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात सुबह 10:55 पर। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

निमाड़ी लोकगीत शाम 5:30 पर। युवाणी कार्यक्रम में शाम 6 बजे क्रम होगा हेलो फ्रेंड्स। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 6:30 पर। खेती गृहस्थी कार्यक्रम में शाम 7:21 पर सुनिएगा वार्ता मिलेट्स की खेती से लाभ। वार्ताकार होंगे सेतु शर्मा। इसके अलावा कृषि समाचार, मौसम और मंडी भाव। समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे रात्रि 8:15 पर। और विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:30 से सभा की समाप्ति तक। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

आज की ताजा खबर में लेते हैं समाचार पत्रों से सुर्खियां। हरसूद नगर परिषद में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर जल प्रदायक व्यवस्था हस्तांतरित की जा रही है। 1 जून से पेयजल व्यवस्था की जिम्मेदारी MPUDC को सौंप दी जाएगी। पुरुषोत्तम मास में तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। कल यानी शनिवार को लगभग 80,000 श्रद्धालु तीर्थनगरी पहुंचे। देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर पहार के माणिक्य स्मारक वाचनालय में आज रात 8 बजे से विशेष कार्यक्रम और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। मध्यप्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय जिला पंचायत खंडवा द्वारा वर्ष 2026-27 में कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में स्वरोजगार संबंधी निशुल्क प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र आगामी 12 जून तक ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

अब कुछ समाचार खेल जगत से। 12वीं राज्य स्तरीय अधिकारी कर्मचारी खेल प्रतियोगिता 2026 छतरपुर में हुई। इसमें खंडवा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुस्तमपुर की शिक्षिका श्रद्धा गुप्ता ने एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीते। अब एक नजर मौसम के हाल पर। नौतपा के 6वें दिन मौसम में हुआ बदलाव। जिले में सुबह बादल छाए रहे। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार अगले 72 घंटे तक धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना बनी रह सकती है। कल दिन का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। समाचारों का संकलन किया शिखा दुबे ने।

0: सुहानी सुबह हो चुकी है और इस सुबह का आनंद लीजिए निमाड़ की सुरीली धड़कन के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
1: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। हमारे श्रोता, आज इस कार्यक्रम में सुनिए ग्राम जसवाड़ी के श्रोता दुर्गेश नागनपुरे से मनीष कुलकर्णी की बातचीत। तो आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं, हमारे श्रोता, इस कार्यक्रम में आज आपसे मिलवाने जा रहे हैं जसवाड़ी के हमारे श्रोता दुर्गेश नागनपुरे जी से। तो दुर्गेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार।
3: जी सर, नमस्कार।
2: दुर्गेश जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए।
3: सर, मैं दुर्गेश नागनपुरे ग्राम जसवाड़ी का निवासी हूँ
2: जी।
3: और मैं एक म्यूजिशियन हूँ। संगीत से जुड़े सभी जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें मैं भाग लेता हूँ और उसी से मेरा परिवार चलता है। एक प्रकार से वह मेरी रोजी रोटी है सर।
2: मतलब संगीत से जुड़े हैं, साथ में आप गायन और वादन से भी जुड़े हुए हैं।
3: जी सर।
2: और यही आपका व्यवसाय भी है
3: जी।
2: जसवाड़ी जो ग्राम है, गांव के बारे में आप कुछ जानकारी दें।
3: हमारे ग्राम जसवाड़ी में बड़े ओमकारेश्वर भगवान का मंदिर है। यहाँ पर जो शिवलिंग है
2: जी,
3: वो बड़े ओमकारेश्वर के नाम से जानी जाती है। और जो ओमकारेश्वर ममलेश्वर में है वहाँ पर छोटे भैया मतलब मानते हैं एक प्रकार से। यहाँ जो शिवलिंग है ना, वो बड़े ओमकारेश्वर है।
2: ऐसा क्यों कहा जाता है उन्हें बड़े ओमकारेश्वर, क्या आप जानते हैं?
3: सर, इतना तो नहीं जानता हूँ। वो ऐसा कहा जाता है हमारे गांव जो भी बुजुर्ग है
2: जी,
3: उनसे सुनते थे पहले सर।
2: तो मतलब बड़े ओमकारेश्वर नाम से ये एक मंदिर वहाँ पे जो है जसवाड़ी में प्रसिद्ध है
3: जी।
2: चलिए, और आपके परिवार के बारे में बताइए आप।
3: सर, मेरे परिवार में मम्मी पापा भाई बहन, और अभी 2-3 साल पहले ही मेरी शादी हुई है, तो मेरी पत्नी है और मेरा छोटा बच्चा है, 6 महीने का है अभी सर।
2: 6 महीने का बालक है आपका
3: जी।
2: तो आप अपने परिवार में आपकी पत्नी का नाम बता सकते हैं, बच्चे का नाम भी बता सकते हैं।
3: मेरी पत्नी का नाम वंदना है और बच्चे का नाम दिव्यांश है सर। मैं उसका नाम ईमेल में भी लिखता हूँ
2: जी,
3: कार्यक्रमों में भी लिख के भेजता हूँ सर।
2: तो ये आपका जो पूरा परिवार है ये भी रेडियो सुनता है कि सिर्फ आप ही रेडियो का आनंद लेते हैं?
3: नहीं सर, ये हम परिवार के सभी सदस्य सुनते हैं रेडियो। आकाशवाणी खंडवा का जो सुबह का कार्यक्रम आस्था के स्वर प्रारंभ होता है उसके पूर्व ही हम रेडियो चालू

0: लेते हैं और 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रेडियो चलता है।
1: सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक आप रेडियो सुनते हैं, तो
0: जी
1: खंडवा के कार्यक्रम ज्यादा सुनने में पसंद करते हैं कि विविध भारती के?
0: सर, खंडवा आकाशवाणी खंडवा के कार्यक्रम ज्यादा सुनते हैं।
1: आकाशवाणी खंडवा के कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
0: सबसे पहले तो कार्यक्रम आपके मित्र, ये गीत, किसान वाणी, युवाणी, लोक रंजनी,
1: मतलब ऐसे कार्यक्रम आपको ज्यादा पसंद आते हैं जिसमें श्रोताओं के नाम शामिल होते हैं?
0: हाँ सर, ये तो ठीक है, पर वो जो अन्य कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती है, लाभप्रद जानकारियां, वो कार्यक्रम भी हम सुनते हैं, उसको भी सुनना नहीं भूलते हैं। नारी जगत कार्यक्रम भी जो भेंट वार्ता है सुनवाई जाती है, स्वास्थ्य संबंधी, वो भी हम सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहते हैं।
1: जसवाड़ी जो गांव है वहां पर ये सुखता डैम भी बना हुआ है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी आप बताएं।
0: सर, जो हमारे यहाँ सुखता डैम है, यहाँ से यहाँ पर फिल्टर प्लांट बना हुआ है सुखता डैम के पास ही, तो वहाँ पर पानी फिल्टर होके खंडवा जाता है।
1: चलिए, आपने सबसे पहले बताया कि आपको जो आपका व्यवसाय है वो संगीत से जुड़ा हुआ है। आप संगीत से जुड़े हैं तो आप गायन और वादन दोनों करते हैं कि सिर्फ गायन करते हैं? तो
0: सर दोनों करता हूँ, गायन वादन दोनों।
1: बजाने में क्या बजाते, कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट आप जो बजाते हैं?
0: इंस्ट्रूमेंट आर्गन बजाता हूँ, कीबोर्ड, सिंथेसाइजर
1: और
0: और ढोलक भी प्ले कर लेता हूँ
1: ढोलक बजाते हैं।
0: जी।
1: ज्यादातर किस तरह के गाने आप गाते हैं?
0: ज्यादातर हिंदी और निमाड़ी गाता हूँ सर मैं।
1: हिंदी और निमाड़ी, तो मतलब फिल्मी गाने होते हैं या भजन होते हैं?
0: भजन होते हैं, हिंदी भजन होते हैं और निमाड़ी में भी भजन ही होते हैं, निमाड़ी भजन।
1: मतलब आपको ज्यादातर आपका जो गायन शैली है वो भक्ति संगीत पर आधारित है, भक्ति
0: जी,
1: गीतों में ही आप ज्यादा गाने गाते हैं
0: जी जी
1: और फिल्मी गानों को नहीं ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो
0: जी सर।
1: ऐसा कौन सा गीत है जो भजन है, मतलब जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा उसे गाते हैं?
0: सर आज तो मैं हमारे श्रोता कार्यक्रम में एक निमाड़ी रचना सभी श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ
1: बोलिए बोलिए। जी
0: जी। सुनिए सर। जे का खोला मरे वा को लाड़ छेरे, धन्य धन्य हमारो निमाड़ छेरे, रूम जूम देखो सजी गण गोर रे, मन महकाव अम्बा का मोर रे, चारे दिशा म धर्म की आड़ छेरे, धन्य धन्य हमारो निमाड़ छेरे, संत सिंगा जी छे अवतारी, रेवा को पानी काट बीमारी, उच्चा बेड़ा न उंडी कराड़ छेरे, धन्य धन्य हमारो निमाड़ छेरे, जेका खोला मरे वा को लाड़ छेरे, धन्य धन्य हमारो निमाड़ छेरे, काली माटी न धवलो सुन्नो, खाती आमाड़ी मीठो गन्नो, लाल मेरी भी चरकी दराड़ छेरे, धन्य धन्य हमारो निमाड़ छेरे, धन्य धन्य हमारो निमाड़ छेरे।
1: बढ़िया दुर्गेश जी, आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई और हमारे निमाड़ क्षेत्र के ऊपर आधारित ये रचना थी। आप इस तरह का, ये क्या मतलब, आप लिखते भी हैं कि सिर्फ गाते ही हैं?
0: सर लिखता भी हूँ
1: ये किसका लिखा हुआ, आपका खुद का लिखा हुआ है क्या?
0: सर, नहीं ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है और इसमें निमार के संत सिंगाजी महाराज और जो भी प्रसिद्ध चीजें हैं उनका इसमें वर्णन है।
1: चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखते भी है, गाते भी है और बजाते हैं, मतलब संगीत के जो आपका शौक है उसे पूर्ण रूप से आप डूबे हुए हैं और इसे व्यवसाय के रूप में भी आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और कुछ काम करते हैं क्या आप?

0: सर इसके अलावा हमारे घर पर इलेक्ट्रॉनिक का काम है, पापा रेडियो टीवी मैकेनिक है, तो उनसे भी थोड़ा थोड़ा काम सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण है।
1: और आपकी पत्नी क्या करती हैं?
0: मेरी पत्नी लेडीज टेलर है, ब्लाउज वगैरह इनका काम करते हो भी।
1: मतलब वो भी कुछ न कुछ काम करती हैं और हमारा रेडियो सुनती हैं।
0: जी। और मेरा छोटा भाई योगेश नागनपुरे ऑक्टोपेड बजाता है मेरे साथ ही, वो भी कार्यक्रमों में जाता है।
1: बढ़िया, मतलब परिवार का सभी सदस्य संगीत से जुड़े हुए हैं आपके। तो
0: जी सर।
1: दुर्गा जी, चलते चलते आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सर अभी तो गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम समाप्त होने वाला है, तो यही अभी मेरा संदेश है कि इस गर्मी में घर से अभी बाहर नहीं निकलना है, मतलब ठंडे समय में निकलना है, शाम के वक्त और सुबह के टाइम में अपने जो भी काम है वो करना है और अपना ध्यान रखना है।
1: चलिए दुर्गे जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे श्रोता कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: जी सर, धन्यवाद, नमस्कार।
2: हमारी श्रोता, आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे ग्राम जसवाड़ी के श्रोता दुर्गेश नागनपुरे से मनीष कुलकर्णी की बातचीत।

आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेश में नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान और रीवा में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता शुरू। 144 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तरीय कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे रोड शो और आम सभा में भाग लेकर क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। डॉ. यादव शुजालपुर में जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

0: मेले में किसानों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिक की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। श्री कुमार ने कहा कि असम, केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान उच्च स्तर की स्पर्धा देखी गई। उन्होंने देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में अपने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भी पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हिंदी पत्रकारिता कई द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का आंदोलन है।
3: हमारे देश की इतिहास में हिंदी पत्रकारिता का एक अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक जी से, महान पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी जी से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी से, चाहे अभ्युदय हो, चाहे उदंत मार्तंड हो, चाहे प्रताप हो, अनेक अनेक संस्करणों से इस देश को जागरूक करने में हिंदी पत्रकारिता का एक अहम योगदान रहा है।
0: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। नर्मदापुरम जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनमें विद्यार्थियों को तंबाकू एवं नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़कर नशा मुक्त वातावरण तैयार करना है। आगरमालवा में जिला स्तरीय नशा मुक्ति रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला पर आधारित रैली कंपनी गार्डन से प्रारंभ होकर जिला पंचायत परिसर पर समाप्त होगी। रीवा में 20 वर्षों के बाद राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की 114 इवेंट में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के मिहिरसेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का कल शुभारंभ कर कार्यक्रम को और शुक्रवार को कैंप लगाकर जन समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। गुना में 3 दिवसीय दिव्यांगजन जागरूकता एवं समावेशी अभियान योजना कार्यशाला का कल समापन हुआ। भोपाल के भारत भवन में 7 दिवसीय सदा नीरा समागम के 4थे दिन कल शाम बाल नाटक मिराज मेलोडीज का आयोजन किया गया। सागर पुलिस प्रशिक्षण शाला में पांचवें नव आरक्षक बुनियादी सत्र

2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थी की परेड संपन्न हुई और बैतूल में आरओ 2026 ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन कल हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित जसराज का गायन। आइए इनसे सुनते हैं राग पुरिया।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का गायन। इनसे आप सुन रहे थे राग पुरिया।
1: फोन करें, गीत सुने।
2: सर फोन लगा लगा के सर जी मैं पसीने में तर बतर हो गया हूँ, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। विश्वास

0: बाहर न निकले।
1: अपने श्रोताओं के संग दिलचस्प बातें, मधुर गीत, सुनिएगा जरूर इस रविवार प्रातः 10:05 पर। फोन करें, गीत सुने। मुझे कहना

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनरे पल का कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त मनीष कुलकर्णी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है 31 मई, यानी वो दिन जिसे हम मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। श्रोताओं, आप जानते हैं कि तंबाकू, इसके बारे में क्या बताऊं, बहुत ही खराब चीज है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि लोगों को तंबाकू के सेवन से जो होने वाली जो जानलेवा स्वास्थ्य बीमारियां हैं उनके बारे में जागरूक करना और तंबाकू से बने हुए जो उत्पाद हैं उनकी खपत को खत्म करना। आइए, बात तो हम अब करते रहेंगे इस विषय पर उसके पहले हम आपको सुनाते हैं ये खूबसूरत नगमा। अनिल जी।

श्रोताओं, खूबसूरत लिखा गुलजार ने और गाया लता मंगेशकर ने कि आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे। पर हम तो कहेंगे कि आपके पांव जमी पर हो ना हो बकायदा, लेकिन आपका ध्यान जमी पर होना चाहिए। तंबाकू जो शब्द है उससे दूर होना आपका जरूरत, क्योंकि तंबाकू को हर वक्त आप ना कहे और स्वास्थ्य को हाँ कहे, हम यही कहेंगे। क्योंकि तंबाकू जो निषेध दिवस ही मुख्य केंद्रीय विषय उसका जो रहा है, आकर्षण का पर्दाफाश करना, क्योंकि इसके प्रति जैसे निकोटीन और तंबाकू की लत जो है उसका मुकाबला करना। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए जो मैंने बात कही कि तंबाकू को ना कहे और स्वास्थ्य को हाँ कहे, ये जो विषय है ये बहुत ही नाजुक है और इससे जितना दूर हो सकते हैं तंबाकू से उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तंबाकू छोड़े और जीवन से नाता जोड़े। आइए एक और खूबसूरत नगमा आपके लिए पेश है आपके इस सुनहरे पल में।

हूँ।

श्रोताओं, ये खूबसूरत नगमे के साथ हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 में धूम्रपान निषेध दिवस का जो मुख्य विषय है यानी थीम, वो है छोड़ो और जीतो। यह दिन धूम्रपान करने वालों को तंबाकू की लत छोड़ने और बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हर वर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को भी मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 31 मई को मनाए जाने वाले विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 की थीम आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। यह थीम युवाओं को लुभाने के लिए तंबाकू उद्योग द्वारा अपनाई जाने वाली भ्रामक मार्केटिंग का पर्दाफाश करने पर केंद्रित है। आइए आनंद लेते हैं एक और खूबसूरत नगमे का।

दीवाना मस्ताना हुआ दिल। तो हम आज बात कर रहे हैं तंबाकू के ऊपर, जिसके 31 मई यानी आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। तंबाकू एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में निकोटीन नामक व्यसनकारी रसायन की जो मात्रा है उच्च पाई जाती है। कटाई के बाद इसको पत्तियों को सुखाते हैं और फिर उसका उपयोग विभिन्न तरीके से किया जाता है, जहाँ तक जिस तरह के बीड़ी या सिगरेट या सिगार इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा उपयोग करते हैं, या फिर कुछ लोग इसे चबाकर तंबाकू खाते हैं, या कहीं कुछ लोग उसको मंजन के रूप में मसूड़ों पर भी लगाने का उपयोग करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तंबाकू जो है वो अगर ज़्यादा मात्रा में और लंबे समय तक इस्तेमाल की जाती है, कुछ लोगों तंबाकू का उपयोग

का उपयोग करते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तंबाकू जो है वो अगर ज़्यादा मात्रा में और लंबे समय तक इस्तेमाल की जाती है, कुछ लोगों तंबाकू का उपयोग करते हुए खाते हुए मुंह के अंदर यानी गाल के आसपास चिपका के रखते हैं, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। भविष्य में यानी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बचना है हमें ऐसी सभी व्यसनकारी बीमारियों से जो हमें आगे जाकर दिक्कत दे सकती है। तो खूबसूरत सुनहरे पल के कार्यक्रम में सुनहरे पल का एक और अगला पल इस नगमे के साथ।

धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, लेकिन हम जोर से बोलेंगे कि आपको तंबाकू से दूर रहना है। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, यह है भारत का नारा। जब ये नारा सिर्फ एक पोस्टर या मंच की बात न रह जाए, बल्कि हर युवा के जीवन का संकल्प बन जाए, तब होगा भारत में वास्तव में विकास, यानी विकसित भारत के साथ नशा मुक्त भारत होना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, ये एक छोटी सी बात हम समझ लेते हैं कि तंबाकू खा रहा है कोई व्यक्ति तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे को देखकर, यानी कि फैशन के तौर पर भी हम आज के जो युवा है वो एक दूसरे के साथ में इस नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। हमें कोशिश करना है कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति सिगरेट या तंबाकू या बीड़ी का सेवन कर रहा है और आपका दोस्त है तो हम भी उसका साथ देने उसके साथ में जुड़ जाएं। हाँ, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे नशे से हमें अपने आप को दूर रखना है जो आगे जाकर हमारे भविष्य में, मतलब हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सबसे बड़ा यानी कि जीवन में धन जो होता है वो है स्वस्थ शरीर, और जब स्वस्थ शरीर होगा तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात वापस यही है कि आज यानी 31 मई को जो विश्व मना रहा है तंबाकू निषेध दिवस, उस दिवस को मनाने का उद्देश्य तभी सफल होगा जब हम सही में अपने और अपने साथियों के साथ तंबाकू को कहेंगे गुड बाय।

श्रोताओं, ये बात अब तभी कह पाएंगे कि ये फूलों की रानी, बहारों की मलिका, जब आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इसलिए आज के दिन यानी आज विश्व समाकुल दिवस पर हम गुड बाय जरूर कहेंगे और अपने दोस्त इस मनीष कुलकर्णी को इस कार्यक्रम सुनहरे पल को समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल, सुबह के ठीक 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
4: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने

0: युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार

0: मैदान में है। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गिब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये

0: गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुगम संगीत में आज के कलाकार है अशोक खोसला। आइए सुनते हैं इनकी गाई चंद गजलें। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं डॉक्टर राही मासूम के इस कलाम से, मौसीकार जगजीत सिंह और जिसके बोल हैं अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाइयों पर मुस्कुराते रहे। आइए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत गजल का।

0: फोन करें, गीत सुनें।
1: सर फोन लगा लगा के सर्दी में पसीने में तर बतर हो गया हूँ, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है भीषण।

0: बाहर ना निकले।
1: अपने श्रोताओं के संग दिलचस्प बातें, मधुर गीत, सुनिएगा जरूर इस रविवार प्रातः 10:05 पर। फोन करें, गीत सुने।
2: मुझे कहना कहना तुझसे है कहना।
3: सुगम संगीत में इस समय आप सुन रहे हैं अशोक खोसला की गायी छंद गजलें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला कलाम, जिगर मुरादाबादी का, और संगीत से सजाया है इसको ओपी नैयर ने। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गजल।

एक लफ्जी मोहब्बत का इतना ही फसाना है। अशोक खोसला की गाई ये खूबसूरत गजल आपने सुनी और इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: ध्वनि तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू को फिल्म कहो ना प्यार है। सावन कुमार के शब्दों को संगीतबद्ध किया राजेश रोशन ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की शनि मंदिर चौक खंडवासी दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी, गौरव सैनी, ईशान सैनी और कार्तिक सैनी, लक्कड़ बाजार खंडवासी ठाकुर भवानी सिंह बे, सिरिया रोहन अंगद ठाकुर, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवासी आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी, फाल्गुनी जोशी, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, झिरनिया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गोड़, नरेंद्र सिंह गोड़, सचिन, प्रीति, भावना, अंतिम, श्रुति, यशराज सिंह गोड़, दिव्यराज सिंह, किट्टू, सावी, पारी और रिदम्या, मोटकमा फी जिला खंडवासी किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल, अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, खेल बाजार पानीपत से भावना मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और भाविका सिक्का, नागचूर रोड संजय कॉलोनी खंडवासी अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, ग्राम कोलारस तालुका नांदुरा से प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक बगाड़े, संकेत बगाड़े, सनावत ग्राम

खंगवाड़ा से दगड़ूजी सेन, धर्मेंद्र सेन, श्रीराम सेन, कलाबाई, सावित्री सेन, निशा सेन, आयुष, दीपांशु, आयुषी और लक्षिता सेन, माता चौक खंडवासी राजेंद्र कटारे, अनीता कटारे, उदय कटारे, उज्ज्वल कटारे और मितांश कटारे, घंटाघर चौक खंडवासी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश सी नारायण खर्ची, ललिता खर्ची, गणेश खर्ची, कार्तिक खर्ची, परी स्वाति, प्रयाग चौधरी और देविका चौधरी, दादाजी धुनी वाले मार्ग खंडवासी मोहम्मद हसनैन हस्सू, बाबा बीबी हमीना, फातिमा मोइन, छोटू मोहम्मद फाजिल, जामा मस्जिद रोड बीकन गांव से साफिया, अरहान खोकर, अनस, शिफा और अयान खोकर, बड़ा बम चौक खंडवासी ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालरा, शुभम चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, इंदौर से अनिल कवचाले और साबिया सुषमा, पद्मा टाकेश नेपानागढ़ से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कौशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ठाक से साक्षी, ऋतुराज और पूर्णिमा पटेल, चांदनी चौक गड़ई पटरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की रानू, रविंद्र रौनक सेन, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी और प्रगति नाचानी, मेहर नगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवणकर, राही सरिता गवणकर, प्रणीता सिद्धांत गवणकर, अर्जुन टुकटुक, प्रिंस एकांश, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, के पी सिंह चौहान, दीपक, सचिन कृष्णा, विराज, अर्णव, काव्यंशी, कृतिका और प्रभा कटारिया।

0: का टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: लीजिए अब सुनिए, सुनीति चौहान और लाभ जानजू को फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में, गीत जयदीप साहनी का और संगीत सलीम सुलेमान का। फरमाइश की है इस गीत के लिए जिला खरगोन सनावत मध्यप्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई और भाई राजकुमार पुडाना, सुधामा नगर खंडवासी लक्ष्मी नंदनी, रितु, रोहित और मुकेश जगता, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तनवी बोट, वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोण, शादाब खत्री, जामा मस्जिद तोड़ गगावा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, मोहम्मद फारूक, हाजी अयुब शेरी, रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा, माँ नर्मदा रेडियो श्रोता शिवकोटी ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, कुमारी सपना सेन, द्वारकीबाई सेन, इंदौर लिम्बोदरी से गिरधारी लाल चौधरी और मनीषा भाई चौधरी, जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल, कल्लनगंज खंडवा से कोसर बी पवार, हसीना बी पवार, अल्तम अलमास बानो और सबीना जहीर पवार, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर, राठौर मोहल्ला ग्राम जामली कला से माणकचंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर, प्रियांशी और दिव्यांश

राठौर, ग्राम छेगांव देवी, जिला खंडवा, मदरेसी, अशोक बागे, वंदना बागे, काना बागे, राज पेलिस, मऊनाथ बंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबिता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू, जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान, नेहरू चौक पेंडन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल जाधव और सिया जाधव, ग्राम नागरकोरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, कुंडी सेक्टर 5 सूर्य नगरी, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और बाय हिमांश, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का ये गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: फोन करें, गीत सुने।
3: सर फोन लगा लगा के सर्दी में पसीने में तर बतर हो गया हूँ, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। विशाल

0: बाहर न निकले।
1: अपने श्रोताओं के संग दिलचस्प बातें, मधुर गीत। सुनिएगा जरूर इस रविवार प्रातः 10:05 पर। फोन करें, गीत सुने।
2: मुझे कहना कहना तुझसे है कहना।
3: श्रोताओं, ये सुनते हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो को फिल्म हम तुम में। गीत प्रसून जोशी का और संगीत जतिन ललित का। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। तालुका श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से हरिबाओ बिड़वे, श्रावण और अनीता बिड़वे। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका और पुनावले। पुणे से अजय सोनवणे, करिश्मा सोनवणे, अविका और विशाखा सोनवणे। जिला नांदेड़ तला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल। कोटवा नारायणपुर बापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, मित राय और हैप्पी राय। दोबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। खाम्बिया छत्तीसगढ़ से साबिया खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। ग्राम लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनीर सिंह, गुललाल सिंह, अभिराज और नलेश्वर नगर से नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवालकर, निर्मला नवालकर, विशाल नवालकर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़ी, आशीष मोहकर। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। पालदा नागा इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। टाउनशिप सेक्टर 8 बिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमां, दीपक अनुशी, श्याम कुंवर। पंचशील नगर तालुका कड़जत से इकबाल अहमद, बागबान शमीम अहमद, रफत अहमद, इमरान अहमद और रईस अहमद, अखलाक अहमद भाई फूल माली और अहमद मुंबईकर। ग्राम फांजुनिया जिला जालौद उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चांसुलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चांसुलिया। पदमपुर जिला गंगा नगर राजस्थान से अरोड़ा मेहता, अरोड़ा ममता, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और मेहर अरोड़ा। कवर कॉलोनी बड़बासी प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। आदर्श ग्राम बठेना पाटन जिला छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, बराज बत्ती, काजल पूर्वी, हेजल रेशमा और राजेश साहू। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से विनोद मुणत जैन, नया जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा। नसलवारा चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवत्ति क्षीरसागर, संजय कुमार चौहान। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघाई, महेश संघाई, प्रज्ञेश संघाई, प्रीतेश संघाई। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। लेते हैं कुछ पत्र। मेन रोड तहलहरा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार, साहिल और सुजाता पोहरकार। छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा चदतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जयवेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी

सज सुजला ज्योति और रेहांश ठाकुर, यादव मोहल्ला सनावसी दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, शास्त्री नगर खंडवासी रमेश पंचोली, बिनुदेवी पंचोली, प्रकाश उर्मिला, दीपक, दीपिका पंचोली, नंदिनी, निखिल और गौरांच पंचोली, चूना चौक जूनापानी सनावसी कालूसी बडोले, सीताराम बडोले, हीरालाल बडोले, तेर सिंह डावर, साहिल हरिओम, विशाल सुमन, रमा कंचन, ग्राम रतनपुर तहसील जिरनिया से भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष नायक, रविंद्र नायक, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य और गुनगुन। ये पत्र मिला है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ग्राम बगडुडवा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोमिना प्रोग्रामिया और उत्कर्ष नेताम, यंग लेडियो लिसनर्स जवारगंज जबलपुर से जितेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्यन जैन, भरुण और अरुण चौरसिया। ये है राजपुर से घीसू दिलावरे, लक्ष्मी सा, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलावरे। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म हम तुम का ये खूबसूरत गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी मीत ये गीत समाप्त करने की मनीष कुलकर्णी को आज्ञा दे। नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के ठीक 9 बजे थोड़ी देर में विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बचना ए हसीनों इस फिल्म का गाना के और शिल्पा राव की आवाजों में, अन्विता दत्त गुप्तन का लिखा हुआ गाना, विशाल शेखर का संगीत।

जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें सबसे पहले कुछ अल्पकालिक प्रभाव दिखने लगते हैं, जैसे कि हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्त में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, और इन तात्कालिक प्रभावों से हृदय प्रणाली पर दबाव पड़ता है और शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। कई धूम्रपान करने वाले लोगों में सहन शक्ति में कमी हो जाती है, लगातार खांसी और स्वाद और गंदगी अनुभूति में भी कमी होने लगती है। ये बात हम आज कर रहे हैं क्योंकि आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं। आई एम कलाम फिल्म का गाना, के की आवाज़ में मानवेंद्र का लिखा हुआ गाना, अभिषेक राय का संगीत।

अब हम बात करते हैं तंबाकू सेवन के जो दीर्घकालिक परिणाम होते हैं उसके बारे में। फेफड़ों का कैंसर जो है वो तंबाकू से होने वाली सबसे मुख्य बीमारी है। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये भी जो बीमारियां हैं फेफड़ों की कार्यक्षमता को धीरे धीरे कम करती चली जाती है और उसके बाद नष्ट कर देती है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और तंबाकू जो लोग उपयोग करते हैं उनमें मुंह के कैंसर, मसूड़ों की बीमारी और दांतों की जो बीमारी है वो बहुत देखी जाती है। तो इन्हीं बातों के मद्देनज़र प्रतिवर्ष 31 मई को ये दिन मनाया जाता है। और अगर हम चाहें तो ये जो तंबाकू है इसके सेवन से बच सकते हैं और लाखों लोगों की जो जान इस के सेवन से चली जाती है उसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए आज नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम तंबाकू को यानी कि टोबैको को कहें नो और अपने स्वास्थ्य को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजरंगी भाईजान फिल्म का गाना केके की आवाज़ में कौसर मुनीर के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना इकबाल फिल्म से के सलीम मर्चेंट, डोमिनिक क्लिंटन और साथियों की आवाजें, इरफान सिद्दीकी के बोल, संगीत है सलीम सुलेमान का।

इकबाल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहां वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल बिस्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी बानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र

सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल विश्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: मेरा बुलबुल सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल बिस्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था।

अनिल बिस्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल बिस्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल बिस्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल बिस्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल बिस्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल बिस्वास के लिए कई गाने गाए।

0: वैसे इसके अलावा अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल विश्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, के पैसा ही मालिक पैसा ही दाता।

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

सन 1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

0: कहता है।
1: लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिपकर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी। अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल बिस्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनकी करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल बिस्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहाँ उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल बिस्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के ठीक 10 बजने वाले हैं। जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी का, वाचन स्वर शरद बाघेला के।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। नौतपा के अंतिम दौर में नर्मदापुरम जिले में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को बादल छाने और हल्की हवाएं चलने से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने और क्विक रिस्पांस टीम गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए होमगार्ड विभाग को उपकरणों की जांच करने और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयां और एम्बुलेंस तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर इस वर्ष 3,94,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसके मुकाबले 5,83,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हुआ। गेहूं बेचने वाले किसानों को 1,507,64,00,000 रुपए का भुगतान किया जाना है, जिसके विरुद्ध अब तक 947,51,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उपार्जन के लिए 25 मई से किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। सेठानी घाट पर आम महोत्सव में जिले के निजी क्षेत्र, शासकीय फर्मों और प्राकृतिक रूप से उत्पादित आमों की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया। लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, चौसा, अल्फांसो, केसर, तोतापरी, हिमसा, बादामी, सफेदा और मालगुआ सहित अनेक प्रजातियों की विशेषताओं और स्वाद की जानकारी लोगों को दी गई। सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नर्मदापुरम जिले के कई अधिकारियों ने प्रदेश के टॉप 5 और टॉप 10 में स्थान बनाया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नर्मदापुरम जिले में जनजाति समुदायों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिले में संचालित जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले IEC अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई और शिविरों का आयोजन कर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाते और वनाधिकार पट्टों से संबंधित मामलों का निराकरण किया गया। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना में 315 गिद्ध दर्ज किए गए। इनमें 299 भारतीय गिद्ध, 11 सफेद गिद्ध और 5 सफेद पीठ वाले गिद्ध शामिल हैं। पिछले वर्षों में ये संख्या 280 से 290 के बीच रही थी। गंगा दशहरा के अवसर पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नर्मदापुरम के विवेकानंद घाट पर श्रमदान कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम आवरी में कलश यात्रा, जन संवाद और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं और जनहानि में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान सूचीकरण का कार्य इन दिनों तेजी से जारी है। इस अभियान में प्रत्येक मकान का विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से दर्ज किया जा रहा है, जिससे डेटा संग्रहण अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध हो सके। स्थानीय निकायों के माध्यम से पूर्व में ही सभी मकानों पर नंबर अंकित किए जा चुके हैं, जिसके आधार पर अब सूचीकरण का कार्य प्रगति पर है। जनजातीय बाहुल्य विकासखंड केसला में 1 माह का ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर कल संपन्न हुआ। शिविर समन्वयक आरती शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के साथ फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभिन्न खेलों सहित नियमित योगाभ्यास भी कराया गया। नर्मदापुरम जिले में आज से विश्व तंबाकू निषेध दिवस से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में विश्व पर्यावरण दिवस के तहत रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी में

0: पर्यावरण देश को आम नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों के तहत जिले भर में घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान चलाया जा रहा है। नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज सिंह यादव ने बताया कि अब तक करीब 3000 से ज्यादा लोग योग शिविरों में हिस्सा ले चुके हैं। नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है
2: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फोन करे की सुने, प्रस्तुति मनीष शर्मा की।
3: फोन करें गीत सुने। आपकी आवाज, आपके जज्बात, आपकी ही पसंद। फोन करें गीत सुने। वेलकम फ्रेंड। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का स्वागत है। फरमाइशी फोन कॉल्स के साथ आज स्वीकार कीजिए अपने रेडियो मित्र मनीष शर्मा का नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सिलसिला, फोन करें गीत सुने। हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
4: हाँ सर जी नमस्कार, मैं बड़ा बम चौक खंडवा से संजय मारकंडे बोल रहा था सर।
3: स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है।
4: सर फोन लगा लगा के सर जी मैं पसीने में तर बतर हो गया हूँ, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है भीषण।
3: इस समय तो संजय मारकंडे जी ऐसा है कि फोन नहीं भी लगाए तो भी पसीना आ रहा है।
4: हाँ ना सर, पसीना इतना आ रहा है कि क्या बताऊँ आपको। फोन लगाते ही गए तो लग गया सर, आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है और आपसे बातचीत हो रही। तो
3: बताइए संजय जी, कैसे हैं आप?
4: सर बढ़िया है, और मैं सभी श्रोताओं और जहाँ तक हमारे आकाशवाणी खंडवा की आवाज जा रही वहाँ तक ये बताऊंगा कि भीषण गर्मी में धूप से बचे, 11 बजे से 4 बजे के बीच बाहर न निकले, और पेय पदार्थों का सेवन करें, जैसे नारियल पानी हुआ, पना हुआ, कोई और शरबत हुआ, नींबू पानी हुआ, ग्लूकोज पिए, ऐसी पेय पदार्थों का सेवन करें। कॉफी और चाय, तले गले पदार्थों का सेवन भी न करें भोजन में।
3: बहुत सारी सलाह आपने दे दी है, क्या आप भी इन सलाहों पर अमल करते हैं?
4: जी मैं तो करता ही हूँ ना, तभी तो स्वस्थ हूँ।
3: इसी तरह आप स्वस्थ रहिए, आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ रहें।
4: बताऊंगा आपको जी, पैसे की गुड़िया फिल्म का गाना है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, कोई फूल न खिलता ये कभी भी ना होती, घर तू ना होती।
3: अनोखी और लाजवाब पसंद होती है आपकी।
4: कोई फूल खिलता ये कभी भी न होती, घर तू न होती,
3: जिंदगी भी ना होती अगर तू ना होती,
4: तू ना होती।
3: वाह वाह, मधुर गीत आपने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी साहब के स्वर में।
4: जी सर।
3: तो संजय जी, आज आपने हमें याद किया इस कार्यक्रम में, फोन किया
4: सर, एक छोटी सी और बात की, जो पीछे हमारे तकनीकी अधिकारी सेवा कर रहे हैं
3: जी,
4: उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इतनी मेहनत करते हैं, और उनका क्या पीछे पर्दे के पीछे है, इसलिए उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।
3: हमारे कार्यक्रम के निर्माण में और कार्यक्रम के निर्बाध प्रसारण में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारा तकनीकी विभाग।
4: जी सर।
3: लीजिए सुनिए आपकी पसंद का मोहम्मद रफी का गाया ये गीत।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालदी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह जी बोल रहे हैं?
1: जी सर, ड्यूटी पीरियड में हूँ और आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ। सर यहाँ तो जबरदस्त गर्मी बढ़ गया है, उमस टाइप का गर्मी है।
0: जी हाँ
1: सर, धूप तेज है
0: बिल्कुल, इस समय नवतपा चल रहा है। ये बताएं आप क्या काम करते हैं वहाँ?
1: मैं सर सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ, यही सब जो बिजली से संबंधित काम करता हूँ सर, और खाने खाने के आता हूँ। उसी समय खाना खाने के बाद में कई केंद्रों में फोन करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी जुड़ता हूँ, ईमेल में भी जुड़ता हूँ, फरमाइश भी सुनता हूँ, सभी कार्यक्रम को सुनता हूँ सर।
0: बताइए आकाशवाणी खंडवा के कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: ये सर ये जो अभी आपका आपकी पसंद कार्यक्रम जो हो रहा था शर्मा जी वाला, ये कार्यक्रम को मैं सुनता हूँ सर, बढ़िया लगता है मेरे को आपकी पसंद
0: जी।
1: और कोई कार्यक्रम जो होता है वो भी सुनता हूँ सर।
0: बताइए आज के इस प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज मैं सुनूंगा सर, फिल्म का नाम है क्या बोलते हैं जबरदस्त, तो गाना है जब चाह याद तुझको आई किशोर कुमार, इसी को सुना दीजिएगा। अब सबसे पहले गीत खंडवा में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, सभी दोस्तों भाई बहनों को, पूरे भारत श्रोता को डिटेल करूंगा पहुंचाने के लिए। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी मैं राजू लाल मेहर गांव भिलवाड़ा जिला झालावाड़ से बोल रहा हूँ।
0: कहिए आपके क्षेत्र में मौसम के क्या हाल हैं?
1: अभी मौसम तो 40 से 45 डिग्री तक तापमान है। अभी
0: तकरीबन सभी जगह इसी प्रकार का तापमान है इस समय।
1: हाँ सर,
0: धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए आप क्या करते हैं?
1: धूप से बचने के लिए तो गमछा बांध के निकलते हैं हाथ पैरों को ढक के।
0: जी,
1: और वैसे हम तो खेत पे रहते हैं, काम हम करते हैं अभी।
0: जी हाँ, काम के लिए तो निकलना ही पड़ता है।
1: हाँ, निकलना ही पड़ता है
0: जी। और साथ में आप हमारे आकाशवाणी खंडवा के कार्यक्रम सुनते हैं नियमित रूप से? कब से सुनना शुरू किया आपने आकाशवाणी खंडवा के कार्यक्रम?
1: महीने भर से।
0: तो पहली बार आपने इस कार्यक्रम में फोन लगाया है?
1: हाँ, पहली बार फोन लगाया।
0: चलिए, आपका स्वागत है आज श्रोता परिवार में जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई।
1: धन्यवाद।
0: बताइए आज के इस प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: विश्वात्मा का सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ
0: रही। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का फिल्म विश्वात्मा का ये गीत।
1: धन्यवाद।

0: आकाशवाणी खंडवा से आप सुन रहे हैं फोन करें गीत सुने हेलो फोन करें गीत सुने कार्यक्रम
1: जी गीत सुने कार्यक्रम
0: जी हाँ
1: आज के प्रस्तुता साथी शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं
0: राकेश पप्पू सेन जी शिवकोठी ओंकारेश्वर से
1: बहुत बहुत धन्यवाद आवाज पहचानने के लिए सर आपका
0: क्या हाल है आपके ओंकारेश्वर में
1: सर ओंकारेश्वर के हाल ये है कि अभी गर्मी का दौर चल रहा है
0: बिल्कुल
1: अभी अधिक मास चल रहा है तो सर अधिक मास के स्नान हेतु हमारे ओंकारेश्वर में अभी काफी श्रद्धालुओं के आवागमन का सिलसिला चल रहा है हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं माँ नर्मदा में स्नान कर भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दर्शन कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात बताएं सर यहाँ ओंकारेश्वर से लगा हुआ हमारा शिव कोठी है
0: जी
1: यहाँ पर आने जाने का एक ही मार्ग है जाते भी यहीं से आते भी यहीं से है तो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि हम ऐसे जगहों पर बसे हुए हैं जहाँ पूरे देश से चाहे किसी भी तीर्थ से यात्री आए परिक्रमा करके तो उनके परिक्रमा करने हेतु उनके दर्शनों का लाभ हमें भी मिलता है कभी कभी मंदिर में ज्यादा भीड़ होने के कारण ड्यूटी लगती है वहाँ पर तो सर उन श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है हमें और हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम ऐसी जगह बसे हुए हैं
0: बड़ी अच्छी बात है राकेश सेन जी इसी तरह से आप सेवा कार्य में जुड़े रहिए और बताइए आज के इस प्रोग्राम में कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे
1: सर अभी फिलहाल जेठ का महीना चल रहा है और गर्मी अपने चरम पर है और नौतप्पा भी लग गई है तो ऐसे में फिल्म कुली नंबर बनाई थी जिसमें जेठ की दो पहरे में गर्मी लगी है सैया
0: आज के इस कार्यक्रम में आपने फोन किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का फिल्म कुली नंबर 1 का ये गीत

0: फोन करेगी सुने कार्यक्रम।
1: जी हाँ,
0: तारीफ क्या करूँ, तारीफ तो खुद हो जाएगी। एक बार आकाशवाणी खंडवा की कार्यक्रम सुनो तो आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: चाहता हूँ मैं आकाशवाणी खंडवा को चाहता ही रहूंगा और मैं जब तक जीऊंगा जब तक आकाशवाणी खंडवा को सुनते ही रहूंगा और पत्र भी लिखता ही रहूंगा। पुरानी श्रोता भीषण गाँव से संतोष सातले बोल रहा हूँ।
1: सातले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में और बहुत ही शानदार शुरुआत की है आपने कॉल की। बताइए भीकन गांव में मौसम के क्या मिजाज हैं?
0: सर भीकन गांव में बहुत गर्मी पड़ रही है सर, 8:30-9 बजे से गर्मी चालू जाती है और उसके बाद में 12-1 बजे बाद हम घर से बाहर निकलते हैं सर।
1: अच्छा,
0: रेडियो सुना करते हैं और दुकान भी चलाया करते हैं सर।
1: तो आकाशवाणी खंडवा के इस समय कौन कौन से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और उन्हें पसंद कर रहे हैं?
0: मैं तो बहुत पुराना, जब से आकाशवाणी स्थापना दिवस हुई जब से मैं आकाशवाणी का बहुत पुराना सुनता हूँ और सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं सर। मैं तो सुनहर पत्र कार्यक्रम है, फिर उसके बाद सुनहर पल कार्यक्रम है सर, गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम है, आपकी पसंद कार्यक्रम है, लोक रंजनी कार्यक्रम है
1: जी,
0: युवाणी कार्यक्रम है, फोन करेगी सुनी कार्यक्रम है सर, सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं सर।
1: आपके परिवार के सभी सदस्य भी मिलकर निर्माण की सुरीली धड़कन का आनंद लेते हैं?
0: हाँ सर, पूरा आनंद तो लेता ही सर, पूरे मोहल्ले वालों को मैं सुनाता हूँ रेडियो सर।
1: वाह, आज इस कार्यक्रम में आपने फोन लगाया, हमें बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करते हुए।
0: हाँ सर, मुझे परिवार का नाम लेना चाहता हूँ सर।
1: बिल्कुल लीजिए।
0: मेरा नाम है संतोष सातले है, मेरी पत्नी का नाम है सारिका सातले, मेरे लड़के का नाम है चंदन सातले, मेरे भांजे का नाम है रोहित सातले, शुभम सातले, शैलेंद्र सातले मेरे भाई का नाम है और मम्मी का नाम है कंचन भाई सातले सर।
1: आज आप क्या सुनेंगे?
0: सर सिनेमा का नाम तो मुझे मालूम नहीं, गीत के बोले साजन ओ साजन आजा।
1: तो सातले जी, परिवार के सभी सदस्य मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
0: सर धन्यवाद सर।

0: हेलो,
1: मैं खंडवा रोड सनावत से रवेचंद वर्मा बोल रहा हूँ सर। साल भर बाद मेरा कॉल लगा है, एक साल पूरा हो गया। अभी खाना खा के और मोबाइल लगा रहा था।
0: कॉल लग गया है तो खुश हो जाइए आज तो।
1: खुशी हो ना सर, बढ़िया हूँ सर। परिवार का नाम लेना चाहता हूँ। मेरी पत्नी का नाम है निर्मला वर्मा, बच्चे का नाम है अशोक वर्मा, बहू का नाम है अर्चना वर्मा, और पोते का नाम है अनुज वर्मा, और पोती का नाम है आयुषी वर्मा। भरा पूरा परिवार है सर मेरा।
0: हो गए सब नाम। अब बताइए, आकाशवाणी खंडवा के कार्यक्रम आप सभी परिवार के सदस्य सुनते हैं?
1: जी सर, सुबह 6 बजे से रेडियो चालू होता है तो शाम को 7-8-9 बजे तक चलते रहता है।
0: इस समय कौन से कार्यक्रम आपको ज्यादा पसंद आ रहे हैं?
1: सभी कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम जो बुराई नहीं कर सकते हैं। सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक होते हैं, और हमारा बच्चा तो हर कार्यक्रम में भाग लेता है। मेल भी आते हैं उसके सर।

0: करते हैं वर्मा जी, आप वहाँ पर?
1: मैं साहब, मेरा बस स्टेशन पर स्टैंड पर दुकान है, फेंसिंग स्टोर है, तो मेरा बच्चा संभालता है, बहुत संभालती है
0: जी,
1: और मैं घर पर ही काम करता हूँ, मंगल सूत्र काटता हूँ लेडीजों के, ये काम है सर। मैं घर बैठे बैठे छाऊ में रेडियो सुना करो और काम करा करो।
0: किस तरह का गीत संगीत आपको पसंद है?
1: मेरे को पुराने गाने बहुत पसंद है सर।
0: कोई पसंदीदा गायक या गायिका?
1: लता जी है, मन्ना डे जी है, मुकेश जी है, किशोर कुमार, सभी गायक अच्छे, पुराने जो गायक है सभी पसंद है सर
0: जी। आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: बस रोटी फिल्म का सुना दो सर, किशोर कुमार जी की आवाज में है, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर
0: जी,
1: लता जी किशोर कुमार की आवाज में।
0: लीजिए सुनिए आपकी पसंद का फिल्म रोटी का ये गीत। गोरे रंग

श्रोताओं के संग दिलचस्प बातों और उनकी पसंद के गीतों से सजा आज का ये सुरीला सफर बस यहीं तक। हम अपने श्रोताओं को बता दें, आज के इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहायक रहे हरिओम पाराशर, आर के शिवपुरिया और मनोज कुमार गुप्ता, सहयोग पूजा पाटीदार का, और आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके अपने रेडियो मित्र मनीष शर्मा ने। अब हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार, फोन करें, गीत सुने। आपकी बात आपकी ही पसंद के साथ सुनते रहिए, फोन करें, गीत सुने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फोन करे गीत सुने, प्रस्तुति मनीष शर्मा की थी। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। बच्चे आप सुने अपना कार्यक्रम बाल जगत।

बाल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आपकी रंजना दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों, छुट्टियों का आनंद तो आप ले ही रहे हैं। हाँ, अभी तो नौतपा चल रहा है तो गर्मी कुछ ज़्यादा है। सुबह सुबह बारिश ने थोड़ा सा ठंडा मौसम कर दिया है, पर गर्मी अभी भी है और इससे बचने के लिए आप तरह तरह के उपाय भी कर रहे होंगे और साथ ही हमारे कार्यक्रम का आनंद भी ले रहे होंगे। बच्चों, हर मौसम का आनंद लीजिए, हर कार्यक्रम का आनंद लीजिए, अपनी छुट्टियां अच्छे से बिताइए और आगे की कक्षा की तैयारी भी साथ साथ करते जाइए। बच्चों, हमारा जो भारत है, हमारी जो भारत भूमि है, उस पर कई ऐसे महान वीर, योद्धा और कुशल प्रशासक और समाज सुधारक रहे जिन्हें हम आज भी उनके पुण्य कार्यों के कारण नमन करते हैं। और जब बात एक महिला की हो तो हमें मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर की याद स्वतः ही आ जाती है। आप जानते हैं बच्चों, रानी अहिल्याबाई ने लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म हुआ था 31 मई यानी आज ही के दिन सन 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौड़ी गांव में और मध्य प्रदेश के होलकर परिवार में विवाह के पश्चात उन्होंने मध्य प्रदेश के महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। और बच्चों, इसे एक प्रमुख राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित भी किया। बच्चों, इन्हें हम लोक माता के नाम से सम्मानित करते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा उन्होंने पूरे भारत में अपने शासनकाल में सैकड़ों मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं, कुओं का निर्माण करवाया, उन्हें सुधरवाया, महिलाओं के लिए कई बड़े बड़े कार्य करते हुए बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा के लिए जोर दिया। बच्चों, ऐसी कर्मठ, निडर और कुशल और मराठा राजमाता के नाम से प्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई होलकर की आज जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। और बच्चों, आज एक खास दिवस और भी है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। पहले सुनते हैं ये गीत।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: बच्चों, आपने देखा और सुना होगा कि तंबाकू का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायी होता है। चाहे मुंह का कैंसर हो, लीवर हो, आंतें हो, हमारे कई अंगों को कमजोर कर देता है। पूरे समय तंबाकू को मुंह में रखना या इसका धुआं लेना, जैसे धूम्रपान कई लोग करते हैं, उसके माध्यम से हमारे अंदर इसका धुआं जो जाता है। और बच्चों, हमें ही नहीं, हमारे आसपास जो लोग खड़े हैं, जो परिवार के अन्य सदस्य भी हैं, और कोई अगर उनके परिवार में कोई अगर इसका सेवन करता है तो वो जो धुआं होता है ना, वो उनको भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस तरह के पदार्थों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। और आपके परिवार में कोई है, मित्र है, या आपके आसपास कोई इसका सेवन करता है, तो उन्हें भी इसके दुष्परिणाम के बारे में बताकर इसे हम छुड़वा सकते हैं। बच्चों, अब समय है जिज्ञासा का। बच्चों, आज की जिज्ञासा है ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसान और इसके बचाव के बारे में। बच्चों, अभी हम भीषण गर्मी और तेज धूप की चपेट में हैं, और ये जो तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, ग्लेशियर का लगातार पिघलना, समुद्र का जलस्तर बढ़ना, और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आना या सूखा पड़ना या फिर बेमौसम बारिश, यही कारण है ग्लोबल वार्मिंग के, जिनसे हमें नुकसान होता है। और पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी और गंभीर समस्या बनती जा रही है बच्चों, और इससे ज़्यादा नुकसान हमें और प्राणियों को, जीव जंतुओं को होता है। इससे बचना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना, बिजली बचाना, बेवजह लाइट, पंखे, कूलर या टीवी को चालू न रखना, यानी बेवजह ऊर्जा की खपत, इसे हमें कम करना होगा। और इसके साथ ही बच्चों, सबसे ज्यादा जरूरी है पानी की बचत। तो ये थी आज की जिज्ञासा।

बच्चों अब सुनते हैं कहानी, और कहानी का जो शीर्षक है वो है बांसुरी वाले ने राजा को दिया सबक। बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में लोग बहुत खुश रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, हंसी मजाक करते थे, मेहनत करते थे, और बाजारों में मिठाइयों की खुशबू और गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी। लेकिन एक दिन गांव में कहीं से हजारों चूहे आ गए, और आपको तो पता है चूहे क्या करते हैं। वे घरों में घुसकर अनाज को नुकसान पहुंचाते, कपड़े कुतर जाते, उनकी धमा चौकड़ी से लोग परेशान हो गए, किसान और दुकानदार दुखी हो गए, और बच्चे डरने लगे। कोई यहाँ से कूदता, कोई वहाँ से फांदता, कोई कभी डब्बा खोल लेता, कोई किसी की मिठाई खा जाता। ओफो, मुन्नी की तो नई ड्रेस भी कुतर दी। तभी राजा ने घोषणा की कि जो भी गांव को चूहों से बचाएगा उसे सोने की 100 मुद्राएं दी जाएंगी। कई लोग कोशिश करके हार गए। तभी एक दिन एक मुसाफिर गांव में आया। उसके हाथ में चमकती हुई बांसुरी थी। उसने कहा, मैं चूहों को यहां से भगा सकता हूं। लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़े, लेकिन राजा ने उसे मौका दे दिया। अगली सुबह मुसाफिर ने बांसुरी बजाना शुरू की। ये क्या, उसकी सुरीली बांसुरी सुनकर मीठी धुन पर सारे चूहे अपने बिलों से बाहर आ गए और उसके पीछे पीछे चलते हुए जंगल की ओर चले गए। जहां जहां बांसुरी वाला जाता चूहे उसके पीछे पीछे चले गए। बांसुरी वाले ने चूहे को शहर से बहुत दूर जंगल में छोड़ दिया। फिर वे कभी लौट कर नहीं आए। गांव वाले बहुत खुश हुए, लेकिन राजा ने इनाम देने से मना कर दिया। दुखी होकर मुसाफिर ने फिर बांसुरी बजाई। इस बार चूहे उसकी धुन पर उसके पीछे चल पड़े। राजा घबरा गया। उसने तुरंत मुसाफिर से माफी मांगी, उसे पूरा इनाम दिया और चूहों को वापस जंगल में छोड़ने की अनुमति दी। बच्चों, इससे हमें क्या सबक मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? जो वादा करो उसे निभाओ, क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। तो बच्चों, ये कहानी के साथ ही आज के बाल जगत कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दें आपकी रंजना दीदी को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दिखा?
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: को आई एम
0: हियर। तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा?
0: पापा रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
0: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
0: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: ये आकाशवाणी है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
9: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
10: कोई बोले राम राम।
9: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: बोल बोल के थक गया।
5: क्या हुआ?
4: नया किट बैग चाहिए।
5: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी।

0: ना मंजूर। चले
1: ले आ गया ना किड बैग।
2: आरबीआई कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार।
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
6: हाँ रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
8: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
9: नमस्कार सर। नमस्कार।
10: नमस्कार सर।
8: अच्छा भैया आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
9: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
8: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
11: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी

0: कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी, मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी।
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज

0: पर टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग

कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से

उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन एक

0: रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्डराज्यस्य राँचीनगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रियमानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर्वीरसिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन् शङ्करः, देवमीणा, कुलदीपकुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वानपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति। सा च अस्ति शतमीटरमितधावनस्पर्धा इत्येषा, अर्थात् शतमीटरमितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये शतमीटरमिते धावनक्रमे राष्ट्रियमानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्याम् एतत् भद्रप्रदर्शनं कृतं तौ स्तः गुरिन्दर्वीरसिंहः, अनिमेषकुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम। प्रधानमन्त्री,

0: एकं रूप्यकं समर्पयेयुः। एवम् एकस्मिन् वर्षे प्रत्येकस्य छात्रस्य पक्षतः 65,300 मित रूप्यकाणि सञ्चितानि अभवन्। एतेषां लघु लघु योगदानेन प्रायः 40,00,000 रूप्यकाणि समाहृतानि। गिरिजा अम्मा महोदया एतस्याः सम्पूर्णायाः राशेः धनादेशं मह्यं समर्पितवती। तया सह सम्भाषणक्रमे मयानुभूतं यत् मातृभारत्याः प्रति तस्याः समर्पणभावः कियत् गभीरः अस्ति। गतवर्षे एव चेन्नई नगरस्य प्रथमः हिन्दू महाविद्यालयः स्वस्य 50वीं वार्षिकीं पूर्णताम् अगच्छत्। देशस्य शिक्षाक्षेत्रे सांस्कृतिक गौरवस्य च संवर्धने अस्य विद्यालय समूहस्य भूमिका अतीव प्रशंसनीया अस्ति। अहं तेन सम्बद्धेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः हार्दिकाः शुभकामनाः वितरामि, तथा च तेषां छात्राणामपि विशेषतया प्रशंसां करोमि ये स्वेषां वीरसैनिकानां कृते योगदानं कृतवन्तः। सखायः, भारतस्य प्रत्येकस्मिन् ग्रामे प्रत्येकस्मिन् नगरे किञ्चित् एतादृशं कार्यं प्रवर्तते यत् अस्मान् प्रेरयति। कतिपयेषु अवसरेषु एतेषां प्रयत्नानां व्यापकः प्रचारः न भवति, किन्तु यदा वयं तान् ज्ञातुम् आरभामहे तदा विश्वासोऽयम् अधिकं दृढो भवति यत् देशः स्वजनानां शक्त्या अग्रे गच्छति। मम भवद्भ्यः आग्रहः अस्ति, स्वं परितः एतादृशान् प्रयत्नान् अवश्यं पश्यन्तु। ये जनाः समाजहिताय उत्तमानि कार्याणि कुर्वन्ति तानि परिचिनुत, तेषां प्रशंसां कुरुत, तेभ्यः शिक्षाम् आप्नोतु। शक्यते चेत् स्वयमपि कस्यचित् सत्कार्यस्य अङ्गं भवतु। आगामी मासे मन की बात कार्यक्रमे अन्याभिः प्रेरणादायिनीभिः गाथाभिः सह पुनरपि भवद्भिः सह सम्बद्धो भविष्यामि। बहु धन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा कर रहे थे अपने मन की बात। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है।
3: दी, ये देख कैसे?
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
5: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: आई नो ना।
7: RBI कहता है,
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
11: को तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
12: दिमाग चार्ज कर अपना।
7: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
12: देखा
11: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
7: अब क्या करोगे?
11: फ्री वाईफाई है ना?
12: बुद्धू सुधर जा।
7: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
11: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
7: RBI कहता है,
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
2: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। दोपहर के 12:09:31 हुए हैं।
12: बुद्धू सुधर जा।
7: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
11: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
7: RBI कहता है,
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
2: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। दोपहर के 12:09:31 हुए हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सॉरी भाई का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं के और तुलसी कुमार का गाया फिल्म नहले पे दहला। इस फिल्म का गाना, गीतकार हैं पंची जालुनवी और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, गाने वाले कलाकार के और सुनीति चौहान, फिल्म का नाम हमराज़।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रीतम के संगीत निर्देशन में अनिल भारद्वाज का लिखा हुआ सुनिए। आवाजें हैं के और राकेश पंडित की और ये फिल्म है स्टम्प्ड।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज केके की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम का अगला गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नितिन उरेकवार का लिखा हुआ। इसे आवाजें दी हैं केके और सुनीति चौहान ने। फिल्म का नाम है रूढ़।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: या वजीर के अलीशत चिन्नोय और जयेश की थी। फिल्म का नाम था दिल ने जिसे अपना कहा। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम के संगीत निर्देशन में सईद कादरी का लिखा हुआ, आवाज केके की, और ये फिल्म है मेट्रो।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन पटवा के संगीत निर्देशन में डॉक्टर सागर की रचना, स्वर के और अन्वेषा सरकार की। फिल्म का नाम है लव यू सोनियो।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने मशहूर पार्श्व गायक केके को याद किया।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का? और मेरा भी जी, इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो पल उतना ही दुखदायी हो जाता है, है ना? तो बस आज हम उन्हीं कुछ पलों पर बात करने वाले हैं कि कई बार जीवन में किसी के चले जाने से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे विचारों से, हमारे दिल और दिमाग से कहीं जब कोई चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एहसास कितना पीड़ादायी होता है। और इसी पर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमने हमारी इबारत लिख भी दी है कि किसी के जीवन, घर, विचार से कहीं चले जाने का एहसास बहुत पीड़ादायी होता है साजना, और दीवाने रूठ कर न जाने कहाँ चले जाते हैं कि फिर उनके बगैर नींद भी नहीं आती। किसी के छोड़कर कहीं चले जाने पर दिल उनकी धुन में रोता जाता है और जोगी बन जाता है। तो ये है आज का सुरीला सफर। हमने आपको इबारत बता दी है, आपने पढ़ भी ली है, और जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनने भी ये सुन लिया होगा कि आज हमने क्या इबारत रखी है। और साथ ही हम उन शब्दों को भी बता देते हैं जो आज के चयनित गीतों में आएंगे। साजना कहीं दीवाने कहां छोड़ के रूठ कर जाता है नींद धुन दिल और जोगी। जी, ये ठीक उसी प्रकार का दुख कह सकते हैं कि आप ये कार्यक्रम अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा, है ना? बस इसी प्रकार कोई जिंदगी से जब चला जाता है और जिंदगी को मझधार में रख जाता है तो कैसा लगता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक बस उन्हीं रिश्तों से हम जब अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं और उसके चले जाने पर, उस किरदार के चले जाने पर हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं कि वो हमारी जिंदगी से चला गया है, तो बस इसी जाने पर आज इस सुरीले सफर को हम तय करने वाले हैं। ठीक है, आप हैं ना हमारे साथ? तो कार्यक्रम का ये है पहला गीत। राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा है शब्द साजना।

ये स्वर थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की, फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थाई होती हैं, अदृश्य होती हैं, और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। और जब मन को पता है कि ये जाने वाला लौटकर आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक अव्यक्त बेचैनी छिपी है, मन में एक मानसिक द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो शब्द हमें दिए हैं, इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आत्मी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं, जहां पलकों पर नींद नहीं सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है। जब कोई अपना रूठकर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बात है, ही विरही है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी। वास्तविकता भी यही है कि किसी का जाना हमें उदास कर देता है, क्योंकि जाना बिछोह को निरूपित करता है और आना मिलन को निरूपित करता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से संगीत की दुनिया की सैर करेंगे। सभी को नमस्ते। बहुत खूब। देखिए, बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संबंधों के बिछुओं में व्यथित हृदय की पीड़ा का बखान है। चाहे ये बिछुओं प्रेमी युगल का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं, और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है। तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं, आप सभी ने। लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती है कि नहीं, ये आपको गाने सुनने के बाद ही पता लगेगा। आइए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपसे पूछनी भी तो है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी जिंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूं चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल, सवाल नहीं, एक बातचीत कह सकते हैं, आपके मन के भाव, आपकी जिंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठ कर आए हैं, निकल कर आए हैं। ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइएगा हमें कि आपसे ऐसी गलती हुई या आपने जो किया सही किया क्या? कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, और बाद में हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की जिंदगी से यूं चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे, कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं। बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी फिर नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं। बिछड़े सभी बारी बारी ये सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगो कर चली आ रही हैं, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारे सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है, हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी, हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे, कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोच कर लिखने बैठूंगा, नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने, यानी एक छोटा सा शब्द है ये, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए हैं। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसर, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है, तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है, जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए।

0: फिफ्टी, कुछ तेरे दिल में फिफ्टी, कुछ मेरे दिल में फिफ्टी, जमाना है बुरा।
1: फिल्म का नाम है CID, गायिका हैं गीता दत्त, जानिसर अख्तर की रचना, OP नैयर की धुन।

जी तो हम भी इस सुरीले सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए, या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रूठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने और बाद में आपको लगा कि नहीं, मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना, चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो भी दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द भाव लेकर आता है, ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहाँ एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ, उन यादों को हम जरूर कहीं ना कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम आरजू। जी, ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे रूठ कर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं की पसंद मिलती है इस गीत के जरिए, है ना।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जाना है तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर कभी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का ये सुरीला सफर, जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहरी में ठंडक पहुंचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तपती दोपहरी में गीत आपको सुकून दे रहे हैं क्या, बताइएगा।

श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई तक छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है। मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की एक आह से कई कहानियां बन जाती हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांग कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है। दिल की बस्ती ऐसे उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है। रातें जागकर कटती हैं, आंखें बंद करती हैं, उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींदें छीन लेता है। इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार हैं, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है, देखिएगा। हाँ, मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो है हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे। मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई जिंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कही नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है। हर छोटी चीज उनकी याद में उनकी याद दिलाती है, कोई गीत, कोई जगह, कोई पुरानी बात। और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारी रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते, लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंसुओं से ज्यादा उन मुस्कुराहटों में छिपा होता है जहां हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखते हैं कि आज संडे की दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी इस समय हमें जाना है, पर उठकर नहीं हम जा रहे, माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं। साजना के साथ सजनी भी होगी, परंतु आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं। क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से? ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए? लिखिएगा ये बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठकर चले आए हैं, आप किसी की जिंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धत्ता बता दिया है, या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बसा ली है, ऐसी बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है। और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई हूँ। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

ग्यावासी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय, जो एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, ये अकेलापन और खालीपन इंसान को अंतर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को ये दर्द ताउम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। रूठ कर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई, तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो, मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौटकर आएगा अचानक और कहेगा मैं यहीं था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूँ मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई, चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए।

जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा सा कि मैं हूं ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है, ये आपने अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो, तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं, शायद वहां दूरियां ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं, और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दुनिया बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत, आशा भोसले की आवाज, शकील बदायूनी के बोल और रवि की धुन।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा जी। ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन किए ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां माँ लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ ना कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंदी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से

फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां मां लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ न कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंदी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गांव के लोग जाने वाले रास्ते पे खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहाँ सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते समय भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है, वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा करते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही एक लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें जरा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियां साथ नहीं देती और आंखें बेवफाई करने लगती हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया। और ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया और कुछ समझ भी नहीं आया। मन को एक अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भरा पल था। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूं और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है, इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूं विविध भारती को। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पूछा है कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वो छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण मैं नहीं भूल पाती, ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी, बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगस्त 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस संसार से चली गई थी और मेरे जीवन में वो इतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और अब सुरीला सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाजत। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है कि इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं, तो मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार।

साथियों, आज 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे है। अलग अलग तरह से किया जाने वाला तंबाकू सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। एक शोध के अनुसार तंबाकू का सेवन करने वाले 10 लोगों में से प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की मृत्यु इससे होने वाले कैंसर या अन्य घातक बीमारियों से हो जाती है। इतने खतरनाक परिणामों को जानते हुए भी लोग इसकी लत के गुलाम बने हुए हैं, जो बेहद चिंताजनक है।

0: हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ रूढ़ियां भी तंबाकू सेवन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू युक्त पान और पान मसाले आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मेहमान नवाजी और आवभगत के रूप में ऑफर किए जाते हैं। ऐसे शौक और परंपराएं किस काम की जिनसे एक पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जाए, जीवन पर घोर संकट आ जाए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

0: तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के बारे में डेविड बिन का कथन है, तंबाकू का वास्तविक चेहरा बीमारी, मौत और डर है, न कि चमक और कृत्रिमता जो तंबाकू उद्योग के उत्पाद बेचने वाले लोग भ्रमित विज्ञापनों के माध्यम से हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। चिकित्सकों के अनुसार मुंह और गले के कैंसर के 90% मामले केवल कैंसर के कारण।
1: प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय विशेष उत्साह में हैं। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में

आदित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों को द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्र की जाएगी। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। तेज आंधी के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। रात करीब 12:30 बजे से सुबह 3 बजे तक भोपाल में तेज हवाएं चलती रहीं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल होने की शिकायतें सामने आईं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले घंटों में भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मौसम विभाग ने आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर में कॉलेज चलो अभियान एवं प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने यहां आयोजित रोड शो में सहभागिता की। रायसेन जिले के ग्राम सेमरी की अंजना यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मादा चीता निरवा और उसके 3 शावकों को कल उनके बाड़े से निकालकर क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया। इससे अब यहां चीतों की संख्या 20 हो गई है। इनकी रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम से लगातार निगरानी की जा रही है। राज्य शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की आज आगरमालवा में बैठक हुई। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया क्षेत्र में पुरुषोत्तम मास 15 दिन पूरे होने के अवसर पर आज सांडिया स्थित नर्मदा तट पर धार्मिक मेले का आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के

0: संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सेलेक्ट हुआ।

0: रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
0: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
2: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
2: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
2: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
2: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
3: नेवी, एयरफोर्स,
4: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
3: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
2: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को

0: देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल विश्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल विश्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना। आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं। स्वर लता मंगेशकर का और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने, फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास की संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल विश्वास का।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है हीर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

0: प्रति से बोल रही हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत।

0: लाल ने। सुनना चाहते हैं आपसे भी। डोंगरगढ़ गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशिला देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद हुए हैं।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहती हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एमजी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा।
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डिजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूं 2 हफ्ते की छुट्टी ले लूं। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेंगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा

0: सा नन्ना मुन्ना हा?
1: प्यारा प्यारा सा दुलारा सा नन्ना
0: तेजी
1: छोड़ दीजिए ना।
0: अरे अरे सुनो तो।
1: नहीं सुनती।
0: ओफो, अरे बात तो सुनो
1: बेनी। देखो देखो तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
0: ओ डेजी डेजी माय लव। डेजी हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
1: ईश्वर की कृपा हुई तो
0: सुनो मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
1: क्यों तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
0: अच्छा बाबा हम दोनों जैसा।

0: डिजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों हो?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चलें।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की।

0: दिन मैं सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
2: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
2: भाई, उसे दवा दी जा रही है,
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में नहीं। जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
2: तो क्या करूं मैं? आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
2: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
2: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
2: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
2: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
2: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता के दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं उठा सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूं। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
2: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूं, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
2: जब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
3: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
2: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों जी?
0: जी
3: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
3: ऐसे क्यों कह रही हो डेजी?

0: प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी भाई, जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
1: अरे भाई वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
0: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा है? ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
2: एक साथ घूमने लगेंगे? आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
0: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है? सो रहा है?
2: वो तो बहुत बीमार है, दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
1: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
0: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है?
1: Well, but that doesn't matter, doctor. Slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
0: अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे को जरूरी काम है। चलो डेजी।
1: ओके
2: अच्छा
1: बाय डॉक्टर, बाय।
2: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
3: जब तक जरूरी होगा।
2: मुझसे अब और नहीं सहा जाता, कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
3: अपने लिए।
2: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
3: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
2: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
1: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
2: आपसे कहा था जरा बच्चे की जांच कर लो।
1: जांच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
2: ये क्यों नहीं कहते कि आप जांच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
3: डेजी, तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
2: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
3: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
2: बंद भी करो ये सब, बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
3: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
2: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
1: मैं घसीट लाया? ये कहो बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है, और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
2: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
1: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
2: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
1: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
2: तुम्हें क्या हो गया है?
1: तुम उससे ज्यादा बेनी के फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
2: मिल गया संतोष। मुझे क्षमा करना बेनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
0: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
2: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
0: कैसी शंका?
2: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
0: डेजी तुम्हारे सवाल बड़ा विचित्र है।
2: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
0: नहीं।
2: हाँ, मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
0: लॉरेंस को? नो नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
2: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
0: डेजी इसके कई कारण हो सकते हैं, पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।

0: ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
1: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो क्या हुआ?
0: इस बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे हैं।
1: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूं। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
1: क्या?
0: लेकिन वास्तव में बात डॉक्टर, डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
1: बोलो।
0: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
1: मैं?
0: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
1: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है। मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी।
0: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
1: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
0: प्लीज डॉक्टर।
1: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
2: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
1: डॉक्टर लॉरेंस?
2: ओ, डॉक्टर रामदास।
1: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
2: बैठ जाइए
1: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
2: जी,
1: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा ना ले, आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
3: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
1: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
3: समझा नहीं?
1: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
3: What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
1: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
3: डॉक्टर।
1: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
3: नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
1: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़ा कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
3: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
1: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
3: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
1: नहीं, नहीं, नहीं। तुम इतने बेवकूफ

0: कहीं के जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझकर ही किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
1: डॉक्टर, डॉक्टर, that was mere death. एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
0: No, it was not a mere death. It was a clear murder.
1: No, doctor.
0: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
1: नो, क्यों डॉक्टर?
0: सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए और इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस? ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
1: डॉक्टर
0: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना?
1: सच है डॉक्टर, लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
0: बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
1: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
0: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू।
0: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर।
0: क्योंकि ना कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर लॉरेंस, मैं अब चलता हूं।
1: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
2: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
1: डेजी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
1: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
2: लॉरेंस, तुम अचानक,
1: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
2: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
1: हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
2: मैं भी तुम्हें,
1: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ, डेजी सब भूल जाओ।
2: भुला दूंगी।
1: हाँ,
2: हमेशा के लिए भुला दूंगी।
1: हाँ, वो डेजी, मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
2: हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
1: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हाँ, ऊटी भी जरूर चलेंगे। चलेंगे ना?
2: हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो।
1: हाँ?

0: Dr. साहब,
1: डेजी,
0: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
1: ये क्या कह रही हो तुम डेजी?
0: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
1: डेजी,
0: तुमने अपने सहपाठी और अपने परम की जान ले
1: नहीं, नहीं नहीं नहीं

0: डेजी सच नहीं है, मैं कहता हूँ डेजी।
1: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
0: ओह माय गॉड,
1: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
0: ओह नो,
1: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
0: विदा?
1: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
0: नहीं, था। डेजी, डेजी।
1: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना।
0: डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। डेजी,
1: नहीं लॉरेंस, नहीं लॉरेंस, विश्वास करो मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? करो करो बेटा, भागी भागी हॉस्पिटल गई। डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
0: एक छोटी सी बात।
1: क्या?
0: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: तो कभी छान।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही

0: होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
0: जी,
1: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
0: जी,
1: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
0: जी।
1: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
0: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में
1: जी।
0: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
1: मैं तो अच्छी हूँ
0: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
1: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
0: अच्छा।
1: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
0: जी,
1: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
0: अच्छा जी।
1: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते हैं। तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
0: अच्छा।
1: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे और तब तो मुंबई नहीं बंबई थी
0: जी, बिल्कुल।
1: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
0: जी,
1: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
0: अच्छा जी।
1: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनके मैनेजर वो वहां पर थे
0: जी,
1: रावल जी।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
0: जी।
1: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इंप्रेस हो गए। और वो इंप्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
0: अच्छा।
1: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए, हम

0: लिए एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार बन
1: गीतकार
0: गए।
1: बन गए थी। कौन
0: तो
1: से
0: अब
1: सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें लिया गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूं मैं
1: जी
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल।
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप,
1: प्रदीप
0: तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में, उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार,
1: जी
0: एक्टर।
1: एक्टर।
0: तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो, तो कवि प्रदीप अलग हो गए,
1: और
0: प्रदीप
1: प्रदीप
0: कुमार
1: कुमार
0: अलग हो गए। तो ये
1: अलग
0: आपके सवाल का जवाब है।
1: हो गए। तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना,
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार की
1: हेमंत
0: आवाज में।
1: कुमार की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी
0: है ना।
1: बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं ये
0: हाँ
1: प्यारा सा गीत।

मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कभी प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था

0: में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था?
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में। तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
0: जाना
1: थी।
0: हुआ जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा। तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी।
1: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड
0: अच्छा।
1: लेना ही बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग मेन, मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती,
0: जी।
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें।
0: इतनी फ्रीडम थी।
1: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
0: नहीं थी जी।
1: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
0: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
1: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं। तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
0: अच्छा।
1: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
0: जी, वो गर्म है,
1: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
0: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
1: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा।
0: अच्छा।
1: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा।

0: मैं कुछ
1: अच्छा
0: लेना नहीं चाहता हूँ,
1: जी
0: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफकोर्स दो तीन साड़ियाँ तो दी
1: हाँ
0: होगी,
1: हाँ
0: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू।
1: पिता जी
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब
1: अच्छा
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: अरे
0: तो
1: हाँ
0: उन्होंने बोल दिया माँ पर, मैं शादी कर रहा हूं, हम लोग को कोई यहां पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
1: जी
0: लेके।
1: जी
0: तो वहां से कोई नहीं आया। वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
1: जी
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था। अरे नारायण जी आप आए हैं, आइए। बोलते माफ कीजिए, लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी जी
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं नहीं घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए। और वैसे मतलब ये जो
1: विवाह,
0: यूनियन था
1: हाँ वो संपन्न
0: विवाह
1: हुआ
0: का, तो वो खुशी खुशी
1: जी
0: उसकी समापन हुआ।
1: जी जी तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही उस
0: पानी बन के
1: दाम्पत्य
0: रही,
1: जीवन में।
0: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी ये सबसे बड़ी बात है जी
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी, और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
1: वाह, उनकी
0: मतलब
1: शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
0: ऐसी
1: में की
0: थी।
1: गई
0: हाँ
1: नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
1: जी

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की
1: आम
0: तरह
1: पिता
0: वो रहे।
1: की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
0: जी, बिल्कुल,
1: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया।
1: जी, जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद, मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था, वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आजादी के लिए लड़ाई
0: जी,
1: वो उन्होंने वहां बहुत नजदीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि जहां पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे, और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
0: ये मतलब कोई जानबूझ के प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था।
1: हाँ।
0: तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है,
1: हाँ,
0: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
1: हाँ। और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
0: जी,
1: इलाहाबाद में। तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
0: हाँ।
1: और
0: तब
1: फिर,
0: तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
1: नहीं नहीं नहीं वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई

0: लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे
1: जी
0: मुंबई,
1: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान।
0: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया
1: उग्र
0: था उस
1: रूप में।
0: वक्त,
1: हाँ जी
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
1: जी क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो जिस कविता ने।
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
1: जी
0: थी,
1: जी
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये
1: जी
0: कविता
1: जी
0: लिखी
1: बिल्कुल।
0: है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
1: बहुत खूब।
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है लेकिन
1: जी जी
0: ये यही
1: जी
0: कविता है जो उन्होंने
1: लिखी
0: उसी वक्त लिखी,
1: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ
0: अंकुर
1: और
0: पैदा
1: वहां से
0: हुआ।
1: वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ
1: जी तो मित्तल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, आज
1: जी
0: हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा।
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी।
1: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
0: जी।
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत।
1: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
0: जी।
1: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं नहीं देखिए, ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
0: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
1: शब्दों की जंग। और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
0: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है।
1: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत है वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
1: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग

0: समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी। सबसे बड़ी बात
0: सही
1: ये
0: बात है।
1: है ना? और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो।
0: बहुत ज्यादा गांधी जी उनके हीरो थे, तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल,
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है ये इस गाने के
1: कोई
0: सिवाय वो पूरी नहीं
1: गाना
0: होती।
1: जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ।
0: जी
1: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही गीत
1: साबरमती के संत।
0: साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: मित्तल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना। लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ, और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी, या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहां क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गाँव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की भी नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है। तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए। फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
0: जी।
1: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
0: बिल्कुल।
1: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं।
0: बिल्कुल। वो दर्शन,
1: छोटे पिंजरे में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊँ,
0: दर्पण में
1: मुखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हरेक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स, और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
0: सीरीज है उनके पास। हाँ, आज भी उनके
1: सुनते हैं लोग,
0: प्रशंसक हैं जो आज भी

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था। शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे, तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं हैं जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था, जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं? हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे, हमारे मतलब जो घर का काम करते थे उनके पास भी एक रेडियो

था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेब चा गाना आला, साहेब चा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण

0: कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
1: अच्छा
0: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं,
1: हाँ,
0: और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी। सब लोग, तुम क्यों रो रही हो?
1: हाँ,
0: मैंने बोला, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं, ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहाँ हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या हैं,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं कि अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे हाँ। भाई तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों
0: में कुछ
1: लिखा है तो।
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले

0: ये बात तो सभी जानते हैं कि खूबसूरती ऊपर वाले की देन है। हर एक इंसान के नए नक्श बनाने वाले ने अपनी ही तरह से बनाए हैं, जो उस इंसान के व्यक्तित्व की पहचान है। सिर्फ सुंदर तीखे नए नक्श ही असली खूबसूरती नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं।
1: कहां से लाई हो जा...

किसी को पहली बार देखते हैं तो आपकी दो आंखें चार होती हैं सामने वाले की दो आंखों से। आंखों के लिए एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो चीज कहते हैं फिरदौस से गुमशुदा जिसको, वो चीज कहते हैं फिरदौस से गुमशुदा जिसको, कभी कभी तेरी आंखों में पाई जाती है।

आंखें आईना होती हैं दिल का। खैर, आंखों के बाद प्रभावित करती है सुरीली आवाज। आवाज में वो जादू होता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, और यही आवाज पहचान होती है इंसान।

जरूर ढाएगा कोई महशर, जरूर फितना बर्पा करेगा तुम्हारा अटखेलियों से चलना, झुका के गर्दन उठा के आंचल। जी हाँ, बारी है चाल की। जहां उठना बैठना बात करना लोगों के मन को लुभाता है, वहीं चलना भी एक अदा है। ऐसी मतवाली चाल जिसे देखकर कोई

खूबसूरती क्या है? देखा जाए तो हर चीज का नियमानुसार होना। किसी की आंखें छोटी होती हैं या बड़ी बड़ी होती हैं, किसी के होंठ पतले हैं या मोटे, लेकिन अदाएं, जी हाँ, अदाएं तो आपके बस में हैं, क्योंकि यही अदाएं देखकर एक

0: ईछे नी माड़की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। सजन रेडियो
2: बजाइयो बजाइयो बजाइयो सारा। जी हाँ साथियों, तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन
0: आकाशवाणी खंडवा। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
3: कुछ सोच के बोला होगा तुमने,
0: सोच कर ही बोला है कि सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा, प्यार हो जाएगा।
4: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। साथियों, अभी आप सुन रहे थे निमाड़ी लोकगीत। शाम के 6 बजने को हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का युवा दिलों के इस पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जिसे लेकर हाजिर है आपका अपना ये दोस्त और रेडियो होस्ट आदित्यराज श्रीवास्तव। स्वीकार करें हमारा नमस्कार। साथियों, गर्मी के इन दिनों में कहाँ जाना है, क्या खाना है, इन सब सवालों के जवाब और अपने सवालों का ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके लिए सवालों का जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं होने दूंगा मैं, लेकिन कौन सा सवालों का, हमारे आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्नों के उत्तर जानने का, क्योंकि वो मैं आपको कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले प्रश्न तो बता दूं, जहां हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शुरू की गई पत्रिका का क्या नाम था। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, काकोरी शहीद स्मारक किस राज्य में स्थित है। अब सवाल हैं तो जवाब तो होगा ही, लेकिन कहाँ, शायद आपके ख्यालों में। और वहाँ नहीं हूँ तो मैं हूँ यहाँ कार्यक्रम के अंत में इनका जवाब बताने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं हूँ यहाँ आपको आपकी फरमाइश किए गए गीतों को सुनाने के लिए।
1: दोस्तों, हर रविवार युववाणी में प्रसारित किया जाता है आपकी फरमाइशी गीतों का क्रम हेलो फ्रेंड्स, जिसमें हम करते हैं आपसे आपके दिल की बातें और सुनवाते हैं आप ही के पसंद के फिल्मी गीत।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूँ ना।
1: तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से कॉल कीजिए और सुनिए अपने पसंदीदा फिल्मी गीत। साथियों, हेलो फ्रेंड्स की रिकॉर्डिंग की जाती है हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच। आकाशवाणी खंडवा का टेलीफोन नंबर है 2226063 और खंडवा का STD कोड है 0733। तो फोन करना ना भूले, कार्यक्रम है हेलो फ्रेंड्स।
0: तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये विशेष फरमाइशी क्रम हेलो फ्रेंड्स, और लेते हैं आज का पहला कॉल।
3: हेलो फ्रेंड्स,
0: हेलो फ्रेंड्स में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए।
4: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी इंद्रभान जी, स्वागत है आपका हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में। इंद्रभान जी, आपने जैसे कि आप बताया, आप छत्तीसगढ़ से इस कॉल को कर रहे हैं और हमारे से आज आपने संपर्क किया है। इंद्रभान जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप करते क्या हैं, क्या आपका कोई व्यवसाय है, आप कोई नौकरी करते हैं, किस तरह का कार्य आप करते हैं?
4: मैं नौकरी करता हूँ सर, नौकरी।
0: अच्छा,
4: आपस में भी जुड़ा हूँ अभी 1 बजे करीब हेलो युवाणी खंडवा के कार्यक्रम में।
0: जी जी बिल्कुल, हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में आपने अपना पसंदीदा गीत सुनने के लिए खंडवा केंद्र जो आकाशवाणी का, उस पर कॉल किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, जब हमें अच्छा लगता है कि हमारे दूसरे प्रदेशों से भी जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारे सुनने वाले साथी हैं, वो जब हमें कॉल करते हैं तो सुन के हमें बड़े अच्छा लगता है। आपने बताया कि आप सर्विस करते हैं, आप किस डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं?
4: बता रहा हूँ सर, मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हूँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से संबंधित।
0: अच्छा, तो इंद्रभान जी, जैसे आज आपने कॉल किया है और अभी गर्मियों का मौसम भी चल रहा है, बिजली से संबंधित उपकरणों को लेकर, ऐसा आप हमारे श्रोताओं को कुछ एक छोटी सी जानकारी देना चाहें कि क्या ध्यान रखना चाहिए या कुछ करना चाहिए, और साथ ही आपका गीत भी बता दें कि आपने कौन सा पसंदीदा आपका गीत सुनने के लिए कॉल किया है?
4: इलेक्ट्रिकल के संबंध में बताऊंगा सर, जी इन्वर्टर लगाते हैं सर, तो जैसे पंखा का चालू रहता है तो पंखा जैसे कुछ कुछ तो मतलब कि इन्वर्टर तो पंखा को सपोर्ट ले लेता है, जैसे लोड से मतलब कि हेवी रहता है तो ले लेता है, कोई इन्वर्टर कमजोर रहता है। लाइट का गोल हो सर, जैसे बाकी भी लाइट जो एक दो तो पंखा का चालू करे और बाकी को सबको बंद कर दे, नहीं तो क्या होगा, इन्वर्टर का पूरा पावर को खींच लेता है सर और लाइट डिम कर देता है पूरा उसको घर।
0: उन्हीं उपकरणों का उपयोग किया जाए और बाकी के जो थोड़ा सा उस समय के लिए हमारे लिए गैर उपयोगी है उन्हें बंद कर हम जो अपने मूल उपयोग है उसमें यूज करें अपने इन्वर्टर और बैटरी का। तो चलिए इंद्रभान जी, आज आपने हमारे फरमाइशी क्रम हेलो फ्रेंड्स में अपना पसंदीदा गीत सुनने के लिए कॉल किया, तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? आप
4: फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम, नई वाली,

0: हेलो
1: हेलो जी,
0: हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: प्रेम प्रिया बोल रहा हूँ सर, ग्राम बछोड़ा नागदा जिला उज्जैन से। जी
0: अच्छा, महाकाल की नगरी से बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, महाकालेश्वर के बाबा के चरणों में हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त मिला है सर। मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे क्या बात है, महाकाल की नगरी में हो के आप एक भजन गायक और सबसे बड़े हमारे देश के जो अन्नदाता हैं हमारे वो भी हैं। एक हमारे महाकाल दाता हैं हमारे सारे सौभाग्य के हमारे जीवन के, और एक आप हमारे अन्नदाता हैं।
1: जी बिल्कुल, बताऊं जैसे कि कुछ भजन होते हैं निर्गुणी भजन भी होते हैं, इसके अलावा कुछ माता जी के भजन होते हैं, हनुमान जी के भजन होते हैं, भोले बाबा के भजन होते हैं, उन भजन को भी मतलब गाया जाता है। और इस तरह से हमारा 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम 4 लोग भजन गाते हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं और 1 ढोलक और 1 तबला बजाते हैं।
0: अच्छा प्रेम जी, आपने बताया कि आप भजन गाते हैं, तो मुझे ये बड़ा ही एक ये बात सुनकर एक बड़ा ही कॉन्फिडेंस है कि आप हमारे जो निमाड़ी लोकगीत या दूसरे जो है उन्हें सुनते होंगे ज़रूर।
1: जी बिल्कुल, लोकगीत भी सुनते हैं, भजन भी सुनते हैं, हमें काफी भजन सीखने को मिलते हैं। और आकाशवाणी पे जो भजन गायक होते हैं ना, उनके भजन सुनते हैं और उनसे भी हम मतलब थोड़े बहुत भजन हम सीख भी जाते हैं।
0: मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किस तरह की खेती आप फॉलो करते हैं ज़्यादा।
1: जी सर, ज्यादातर हमारे यहाँ पे गेहूं और लहसुन की फसल पैदावार होती है, तो हाँ गेहूं और लहसुन की फसल लगाते हैं हम, और बरसात में सोयाबीन की फसल लगाई जाती है हमारे यहाँ पे।
0: प्रेम जी, आज आपने हमारे इस फरमाइशी क्रम हेलो फ्रेंड्स में अपनी पसंद का

0: गीत सुनने के लिए कॉल किया है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: के बोले आने से उसके आए बहार, तो मैं कहूंगा कि आकाशवाणी को सुनने से मेरे जीवन में बहार आई है।
0: तो चलिए प्रेम जी आपको सुनाते हैं आपके पसंद।

0: हेलो फ्रेंड्स, में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: सोहन पटेल, तिरोले किराना बरगा खुर्द से।
0: सोहन जी, आपने जैसे कि ये स्पष्ट कर दिया कि आप एक ग्रोसरी शॉप किराना दुकान चलाते हैं, तो गर्मी को देखते हुए अपनी दुकान पे कोल्ड ड्रिंक या ऐसी कोई चीजें रखते हैं जिनसे लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिले? या
1: कोल्ड ड्रिंक सर रखते हैं अपन, चोकोबार, आइसक्रीम, कौन सा भी चीजें।
0: सोहन जी, मैं आपसे एक चीज चाहूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे किराना दुकान चलाते हैं, दिन भर आपकी दुकान के बाहर कई लोग आते जाते होंगे, बच्चे बड़े, जैसे कि आपने बताया आप आइसक्रीम्स और बाकी चीजें भी रखते हैं, तो क्या आपने अपने दुकान के बाहर इन गर्मी के दिनों में जो हमारे आने जाने वाले जो राहगीर होते हैं या जो दूसरे लोग होते हैं, उनके लिए कोई मटका या रखा हुआ है? ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपने सभी श्रोता साथियों को बोलना चाहूंगा, अगर संभव हो तो इन गर्मी के दिनों में जरूर अपने दुकान, अपने व्यवसाय या जो भी जिस भी जगह पर आप हैं, तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए या हो सके तो जो हमारे बेजुबान पशु हैं उनके लिए, चिड़ियाओं के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें। बताइए, आज आपने हमारे इस फरमाइशी क्रम हेलो फ्रेंड्स में कॉल किया है, तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद कर रहे हैं, कौन सी मूवी का?
1: मैं सुनना चाहता हूँ प्रिया प्रिया ओ प्रिया, ओ प्रिया प्रिया ओ प्रिया, तू चांद है पूनम का।
0: बेहतर तरीके से आपने मुझे इस गीत को याद दिलवाया है। चलिए सोहन जी, आपको सुनाते हैं आपकी फरमाइश पे ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो फ्रेंड्स,
0: हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: मैं सुदामा माहेश्वरी, सराफा बाजार, खंडवा।
0: जैसे ही आपने अपना परिचय दिया, मैं आपको बिल्कुल इमेजिन कर पा रहा हूँ कि आप अभी बिल्कुल जैन मंदिर के सामने अपने शरबत के ठेले से आप ठंडे पेय पदार्थ पिलाकर इस गर्मी से राहत दिला रहे हैं। आज को देखते हुए जैसे हमारी जो यूथ है वो आजकल अलग अलग तरीके के पेय पदार्थ में फ्लेवर ट्राई करना चाहती है। मैंने नई नई चीज़ें सुनी है, जैसे कोई माचा हो गया, कुछ ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, तो ऐसे कोई न्यू फ्लेवर की मांग आपसे आके हमारी नई पीढ़ी करती है क्या कि हमें इस फ्लेवर का शरबत पीना है या ऐसा कुछ करना है?
1: वो तो हर चीज में पब्लिक की डिमांड रहती है, कस्टमर की, तो जो अपने पास अवेलेबल रहता है वो दे देते हैं।
0: क्योंकि मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ उस चीज को जानने में कि जो परंपरागत जो चीजें होती हैं उसमें हमारी न्यू पीढ़ी जो चेंज करती है कई बार अपने अकॉर्डिंग, हर चीज को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहती है बेसिकली हमारी यूथ। तो क्या आपसे कभी किसी हमारे ऐसे यूथ ने या किसी ऐसे युवा मन साथी ने आके, कभी युवा दिल साथी ने आके कि मुझे शरबत में ऐसा कुछ चेंज चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ कभी आपसे रिक्वेस्ट की है?
1: हाँ, करते रिक्वेस्ट करते हैं, जैसा अपने से थोड़ा सा अपने जो सहयोग बनता कर लेते हैं, उसमें उनको जो संतुष्टि हो जाती है तो वो उनसे अपने को बड़ा आनंद आता है।
0: ग्राहक की संतुष्टि तो जो विक्रेता होता है, जो भी सुविधा
1: हाँ
0: प्रदान करने वाला, तो उसकी संतुष्टि में ही उसका सारा सार होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। सुदामा जी, तो बताइए आज आपने हमारे इस फरमाइशी क्रम में कौन सा गीत सुनने के लिए कॉल किया है?
1: फिल्म का नाम है ठोकर, आज ये मौसम बड़ा मेहमान है।
0: चलिए सुदामा जी, आपको सुनाते हैं आपकी फरमाइश पे ये गीत।

0: तो साथियों, आज के हमारे इस विशेष फरमाइशी क्रम हेलो फ्रेंड्स के इस अंतिम कॉल के साथ अब करते हैं आज के इस क्रम का समाप्त। आज के हमारे इस क्रम को सफल बनाने में तकनीकी सहयोग प्रदान किया ओम पाराशर और मनोज कुमार गुप्ता ने। प्रस्तुति सहयोग प्रियंका गुप्ता का, प्रस्तुतकर्ता आदित्यराज श्रीवास्तव।
1: हर रविवार युववाणी में प्रसारित किया जाता है आपके फरमाइशी गीतों का क्रम
2: हेलो फ्रेंड्स,
1: जिसमें हम करते हैं आपसे आपके दिल की बातें और सुनवाते हैं आप ही के पसंद के फिल्मी गीत।
3: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना।
1: तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से कॉल कीजिए और सुनिए अपने पसंदीदा फिल्मी गीत। साथियों, हेलो फ्रेंड्स की रिकॉर्डिंग की जाती है हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच। आकाशवाणी खंडवा का टेलीफोन नंबर है 2226063 और खंडवा का STD कोड है 0733। तो फोन करना ना भूलें। कार्यक्रम है हेलो फ्रेंड्स।
0: इसी फरमाइशी क्रम हेलो फ्रेंड्स की कड़ी में एक निवेदन हमारा साथियों आप सभी से कि जिनके फरमाइशी गीतों और बातों को हमने इस बार लिया है, यानी कि हमारी कॉल में हमने लिया है, वे कम से कम अगले 3 सप्ताह तक कॉल करना थोड़ा सा इग्नोर करें, ताकि हमारे बाकी रेडियो सुनने वाले जो साथी हैं उनके जो पसंद के गीत और बातें हैं वो भी हम सुन पाएँ कहाँ, हमारे इसी फरमाइशी क्रम हेलो फ्रेंड्स में। और जैसा कि आपकी हमारी बातों में मुझे समय का पता नहीं चलता, लेकिन क्या करूं, इन घड़ी की सुइयों के आगे किसी का बस नहीं चलता, और यही घड़ी की सुइयां मुझे बता रही हैं कि अब समय है कार्यक्रम समाप्ति का। लेकिन उससे पहले बता देते हैं हम आपको हमारे आज के सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्नों के उत्तर, जहाँ हमारा आज का पहला प्रश्न था स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शुरू की गई पत्रिका का क्या नाम था, जिसका उत्तर है प्रबुद्ध भारत। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था काकोरी शहीद स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। और साथियों करते रहिएगा हमारे इस फरमाइशी क्रम हेलो फ्रेंड्स में कॉल। अभी दीजिए आपके इस रेडियो होस्ट और दोस्त आदित्य श्रीवास्तव को इजाज़त। नमस्कार।

0: रंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहें निवाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

101.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा फातिमा लोखंडवाला के साथ और अब हम करते हैं आगाज आज के फिल्म संगीत का। आजकल शोर का पर्याय अलग ही हो गया है। सड़कों पर ट्रैफिक के, घरों में कूलर के और दिमाग में बेचैनी के शोर से ऊपर अब सोशल मीडिया का हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी का शोर अलग आयाम चढ़ रहा है। और क्योंकि हम इंसानों की फितरत ही कुछ ऐसी है कि जितनी जल्दी मर्ज का हम इजाद कर लेते हैं उसका इलाज भी उतनी ही जल्दी खोज निकालते हैं, तो अब हमने इसकी दवा भी क्राफ्ट्स में ढूंढ ली है। कोई मिट्टी में हाथ सना कर पॉटरी कर रहा है, कोई मोम पिघला कर खुशबुओं से चित्त शांत कर रहा है, तो कोई रंगीन धागों से अपनी टेपेस्ट्री बुन रहा है। मैं आपको बता दूं, टेपेस्ट्री वो होती है जिसमें किसी पल को या कहानी को धागों से बुन जीवंत कर दिया जाता है। बस मेरे पास रखे हुए धागों से ऐसी ही एक टेपेस्ट्री बुनने की कोशिश कर रही हूं मैं। बस अंतर ये है कि अभी बुनने के लिए कोई कहानी नहीं है मेरे पास, बस एक अपरिभाषित सा एहसास है।

आज बात धागों की हो रही है। इतने रंग के धागे होते हैं और हर रंग के अनगिनत शेड्स। हर धागे की अपनी प्रकृति और जिंदगी की बड़ी सी टेपेस्ट्री में अपना हिस्सा। जितने ज्यादा धागे उतने ज्यादा उलझन। पर अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ उलझनों में हम खुद ही उलझना चाहते हों। वो उलझन जो हम दिल के हाथों मजबूर हो खुद के लिए चुन लेते हैं। ऐसी उलझन जो शायद दस्तक देती ही इसलिए है कि कुछ थोड़ा हमें सुलझा दे।

शब्दों में पिरोना ही हो तो तुम्हें मुझे जोड़े रखने वाले धागों के कई नाम दिए जा सकते हैं। पर मुझे आज गुण की बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है उन खाली जगहों की जो तुम्हारे साथ होने पर भरने लगती है। और इस रिश्ते की खास बात यह है कि किंटसुगी में तो फिर भी सोना लगता है टूटा हुआ जोड़ने के लिए, पर हमारे फटे हुए को रफू करने के लिए हमारे जज्बातों का धागा ही काफी है।

एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि हम क्या बुन रहे हैं? मैं तुम्हें इतना तो जानती हूँ कि इसे ख्वाब ना कहूँ, पर मैं तुम्हें इतना भी नहीं जानती कि इसे हकीकत कह दूँ। तुम्हें पता हो तो तुम ही बता दो कि क्या बुन रहे हैं।

तुम्हारा मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैं तुम्हारी बातों के बीच बीच में चुप हो जाती हूँ। काश तुम्हें पता होता कि उसे लाजवाब होना कहते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि जो तुम बना रहे हो वो उस पल की टेपेस्ट्री नहीं, तुम बन रहे हो रेशे रेशे जोड़कर धागे, जिनसे मैं एक बार फिर बन रही हूँ। और मैं क्या बन रही हूँ मुझे इस बात का अभी तो अंदाज़ा नहीं है, पर जो भी है मुझे ये अधूरी तस्वीर फिलहाल तो अच्छी लग रही है।

साथियों, ये तो था आज का फिल्म संगीत जो आप सुन रहे थे फातिमा लोखंडवाला के साथ। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें अपने पत्रों के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। शाम के 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और QR कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुँचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। FM Bank.

0: 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: कुछ सोच के बोला होगा तुमने,
0: सोच कर ही बोला है कि सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा, प्यार हो जाएगा।
2: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
3: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
2: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
3: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
4: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों?
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
2: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
1: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
2: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
1: आप कब आ रहे हैं?
2: आकाशवाणी खंडवा पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो
4: कूल रहो।
5: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांदीपनि विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा
9: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
8: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की जिन्होंने मद्दी टोलाब क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों का समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, DDRF, SDRF, NDRF और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आपात स्थिति के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र हेल्पलाइन नंबर है 89587573355 और 82183263866 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान

0: सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों को द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्रित की जाएगी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। उन्होंने 121 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि के मां शारदा सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर, महाराणा प्रताप सांदीपनी विद्यालय अकोदिया, मिहिर भोज सांदीपनी विद्यालय सुंदर सिंह और राजा भोज सांदीपनी विद्यालय पोचानेर के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत प्रदेश सरकार कृषि, किसान और गांवों की समृद्धि के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने, दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा,
2: दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार आवारा पशुओं के लिए गौशाला के लिए 3-4 प्रकार जो पंचायत गौशाला खोलती है उन गौशाला में वहां मदद कर रहे हैं। नगरी निकाय में पहले पिंजरा पुल खड़क बनते थे, हमने कहा पिंजरा पुल खड़क बनाने की जरूरत नहीं, गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें। ऐसे में अगर कोई घर में नहीं रखना चाहता और वो खिड़क में पहुंचा देता तो कोई बात नहीं, बड़ी गौशाला नगरी निकाय जहाँ नगर निगम भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर ग्वालियर में तो 9,000 की किसानों की आय बढ़ाने की जो हमारी प्रतिबद्धता, मुझे इस बात का संतोष है कि आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से साझी के आधार पर हमने अपने दूध का कलेक्शन 10 लाख लीटर प्रति मध्य प्रदेश प्रतिदिन का था उसको बढ़ाकर के 12 से 15 लाख लीटर तक ले गए और आगे बढ़ाकर के जो देश के अंदर हमारा जो सहयोग 12% का था इसको 20% तक ले जाकर के हमारे किसानों की आय दूध के माध्यम से भी बढ़ना चाहिए।
0: एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू की बजाय आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई से 3 जून तक प्रदेश में आंधी, बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। जबलपुर, सतना और खंडवा में जन जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आज वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीमच में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों के श्रेणी सुधार में जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। शिवपुरी में 7 दिवसीय कृत्रिम अंग निर्माण और वितरण शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांतिपनी विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
5: हाँ, जब तक निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा ने सुनी लेती है, जब तक तमख चैनन नहीं मिलतो है, तो आप भी सुनी लो निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
6: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

हमारा सभी किसान भाई बहनों का साथ छे आज आपकी बहन वाणी महोदय तो स्वीकार करो मारी राम राम। भाई बहनों ने संसार में हमको खाना पीना की बहुत सी चीज न प्राकृतिक रूप से मिले छे न बहुत सी चीज न ख हम अपना खेत फल बगीचा न लगई न उनको अच्छो उत्पादन भी लेवाएं, मगर इनमें भी कुछ चीज न हमारा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद छे तो कुछ चीज न नुकसानदायक छे। एमज आवे नशो, नशो चाहे शराब को, गुटखा को, धूम्रपान, चरस, गांजो किसी को भी होए, वो हमारा लेना खतरनाक छे। न नशा की आदत हमको एक दुई दिन में नहीं लगती है, ये धीरे धीरे हमको अपनी गिरफ्त में लेज। न ओका बाद हम ओका आदि हुई जावन, न आज भी विश्व तम्बाकू निषेध दिवस छे। तम्बाकू को नशो सिगरेट, बीड़ी, गुटखा न खैनी का रूप में करो जाए। तम्बाकू को सेवन किसी रूप में भी करो जाए, ये धीरे धीरे हमारा शरीर ख अंदर सी खोखलो बनाई दे। तम्बाकू में निकोटीन नामक हानिकारक रसायन रहे जी की शरीर में कई गंभीर बीमारी को कारण भी बनाज। तम्बाकू को सेवन करना सी व्यक्ति खुद को तो नुकसान करा जज, साथ ज उनका संपर्क में आने वाला न घर परिवार का लोग न पर भी एको हानिकारक प्रभाव पड़ा। तम्बाकू का सेवन से कैंसर, हृदय रोग, श्वसन तंत्र की समस्या जैसी गंभीर बीमारी न तो आजकल तेजी से फैली रही। साथ जी व्यक्ति तम्बाकू को सेवन करे ओका दांत भी जल्दी खराब हो जाए। भाई बहनोनी आज 31 मई ख यानी कि आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस का रूप में मनायो जाए। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस की स्थापना सन 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य न देश न का द्वारा तंबाकू उत्पाद न सी सभी लोग न का स्वास्थ्य पर होने वाला नुकसान न पर्यावरण में होने वाला नुकसान का बारे में

लोग जागरूकता बढ़ाई जाए। साथ भाई बहनों अगर कोई भाई तमाखू न धूम्रपान को आदि छे तो ये आदत का छोड़नो चाहज तो सबसे पहले तो आपका दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत रहे, क्योंकि जब इंसान कोई भी काम करना की ठानी ले तो पर जीत जरूर हासिल करज। जब भी तम्बाकू खाने की इच्छा हो तो ऊना समय तम्बाकू की जगह अपना मुँह में सौंफ, अदरक का टुकड़ो, मेवा या इलायची या बगैर शक्कर वाली च्युइंगम चबई न अपना मुँह व्यस्त रखी सकान। साथ असा लोग नसी दूरी भी बनावनो बहुत जरूरी छे जी की एको सेवन करता हो। व्यायाम ने योग करनु चाहिए, साथ चिकित्सीय सलाह लेनु चाहिए। अगर हम इन सब बात न को ध्यान रखांगा तो धीरे धीरे हम इन्हीं लत से छुटकारो पाई सकान। एक ही पहल हम कल सी नहीं बल्कि आज से करनो चाहिए। भाई बिन्नोनी अब सुना यो निमाड़ी लोकगीत जेखा गायो जयराम साव ने न साथी न ना।

भाई बहनों ने अब समय छे आपको आज को खेती किसानी से जुड़े प्रश्न पूछना को। तो आज को हमारो प्रश्न छे रजत फाइबर क्रांति को संबंध किना उत्पादन से छे। नहीं इना प्रश्न को उत्तर तो हम आपको जरूर बतावांगा, लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम का अंत में तब तक बने रहो हमारा साथ न कार्यक्रम को आनंद लो। भाई बहनों ने हमारा खेत न फसल की कटाई गहाई का बाद फसल अवशेष जैसा कि फसल का तना जड़ न पत्ती न खेत में रह जाए, जेखा कि पहले का समय में कचरो माने जातो थो, न उख इकट्ठो करी न जलाई दियो जातो थो, जी की बहुत गलत थो। न अब हमारा किसान भाई भी जागरूक हुई गए, न अपना फसल अवशेष न को प्रबंधन करी दे, जेका से उनका कई तरह का लाभ भी मिले। फसल अवशेष न को प्रबंधन दुई तरीका से हमारा किसान भाई करी सके। पहला तरीका में हमारा किसान भाई बोए से पहले खेत की जुताई करी न फसल अवशेष नख मिट्टी में मिलाई दे। न दूसरो आधुनिक कृषि तरीको छे जेमा की कम जुताई या बिना जुताई वाली खेती, जेमा की किसान भाई फसल अवशेष नख मिट्टी में मिलावण की जगह फसल अवशेष नख खेत की मिट्टी का उपराज छोड़ी दे। न मिट्टी की जुताई करेल बिना खेत की बुआई करी दे। फसल अवशेष नख खेत में मिलावण सी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ज, साथ 20 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक खेत का जोतना का साथ साथ नाइट्रोजन उर्वरक मिलज, न मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ी जाएज, न नाइट्रोजन की कमी भी मिट्टी में नहीं रहती है। साथ भाई बहनों ने फसल अवशेष नख मिट्टी में मिलावण सी फसल नका द्वारा अवशोषित पुनर्चक्रित पोषक तत्व मिलज, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ न की मात्रा ख बनाएल रखना या बढ़ावना में मदद करज, साथ मिट्टी में सूक्ष्म जीव न ख आधार प्रदान करज, न मिट्टी का कार्बनिक घटक ख बढ़ावज, साथ फसल अवशेष ख मिट्टी में मिलावण से मिट्टी की जलधारण क्षमता भी बढ़ज, जेका से मिट्टी का कटाव भी कम होज। फसल अवशेष की जुताई का अलावा किसान भाई कृषि प्रबंधन में आवरण फसल नमा हरी खाद की जुताई खभी शामिल करी सके, जेका सी मिट्टी में जैविक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलज। अब दूसरो बिना जुताई वाली खेती में फसल अवशेष नख जमीन पर डाली दियो जाए, इन्हीं पद्धति नमा फसल अवशेष नख खेत में छोड़ी दियो जाए। बिना जुताई करेल खेती में बेहतर पैदावार सुनिश्चित करने का लेना अलग अलग पद्धति न की जरूरत रहे, जैसो कि आवरण फसल न उगावणो, उर्वरक न कीटनाशक न को प्रयोग करनो, ताकि मिट्टी को गुणधर्म न में सुधार हो सके। बिना जुताई वाली खेती में मिट्टी का लेना भी बहुत सा फायदा छे, जैसा कि मिट्टी की सतह पर मौजूद फसल अवशेष न सी मिट्टी ठंडी रहे, साथ मिट्टी की नमी ख बढ़ावना न वाष्पीकरण ख कम करना में मदद करज, भारी मशीन न को खेत में कम उपयोग होना सी मिट्टी की संघनन न सतही पपड़ी नहीं बनती है, जेका सी पौधा नख अंकुरित होना न गहरी जड़ न विकसित करना में आसानी हो। तो भाई बहनों आप भी अपना खेत न मसी निकलने वाला फसल

0: शेषनाग खेत में मिलने कई तरह का लाभ ले सको। तो आप सब भी फसल अवशेष नख जलावना का बजाय ओको उचित प्रबंधन करोगा। भाई विनोणी ई तो थी आपकी न हमारी थोड़ी सी बातचीत न अमा सुना वार्ता मिलेट्स की खेती से लाभ विषय पर जानकारी दे रही बहन सेतु शर्मा।
1: आजकल स्वास्थ्य मुख्य मुद्दा बन चुका है, यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छे स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा आहार। हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हों। आजकल एक नए प्रकार के अनाज के बारे में चर्चा हो रही है, इसे मिलेट्स या मोटा अनाज भी कहा जाता है। मिलेट्स एक प्रकार के अनाज ही होते हैं जो कि गेहूँ, चावल, जौ के समान ही होते हैं, परंतु इनमें अधिक पोषण और स्वास्थ्य लाभ होते हैं। ज्वार, ज्वार भारत का एक लोकप्रिय मिलेट है। इसे अक्सर रोटी, डोसा या चावल के रूप में खाया जाता है। यह फाइबर और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। यह ग्लूटन फ्री होता है, जिससे इसे ग्लूटन एलर्जी वाले लोग भी खा सकते हैं। बाजरा, बाजरा विटामिन बी, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसकी खेती उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर की जाती है। रागी को मंडुआ या नाचनी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह खासकर दक्षिण भारत में पसंद किया जाता है। डोसा, इडली और रोटी के रूप में इसे बनाकर खाया जाता है। कोरा, कोरा अच्छी तरह से पचनीय होता है और यह फाइबर और विटामिन का अच्छा स्रोत है। इससे पुलाव एवं उपमा बनाकर खाया जा सकता है। बर्गर, इससे हमें विटामिन, मिनरल्स एवं प्रोटीन मिलता है। मिलेट्स शरीर के लिए बहुत फायदेमंद अनाज होता है। यह इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, एसिडिटी की समस्या में भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन B3 होता है जो कि शरीर के मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखता है। अस्थमा के मरीजों के लिए भी यह बेहद फायदेमंद है। मिलेट्स थायराइड, लीवर, किडनी से जुड़ी बीमारियों में भी लाभदायक होता है। यह शरीर को डिटॉक्स करता है। यह एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर होता है। बाजरा सर्दियों के लिए पौष्टिक आहार माना जाता है। यह शरीर में गर्माहट बनाए रखता है। इसमें मौजूद तत्व फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल शरीर में स्फूर्ति लाते हैं। रागी का उपयोग हम सर्दियों और गर्मियों दोनों में कर सकते हैं। रागी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा भोजन है। यह फाइबर से भरपूर होता है। हृदय रोग, गठिया, शरीर में सूजन जैसी समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है। भारत में 60 के दशक में मिलेट का उत्पादन कम हुआ और उसकी जगह गेहूं और चावल ने ले ली। गेहूं को बहुत बढ़ावा दिया गया जो कि एक प्रकार का मैदा ही है। मोटा अनाज खाना बंद कर देने से कई प्रकार के रोगों के साथ हमारे देश में कुपोषण भी बढ़ा है। कोरोना के बाद मोटा अनाज इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उभर कर सामने आया है। इन्हें सुपर फूड भी कहा जाने लगा है। मोटे अनाज की फसल को उगाने का फायदा बहुत है। इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। पानी की कमी होने पर यह खराब भी नहीं होती। ज़्यादा बारिश या कम बारिश होने पर इसे कोई नुकसान भी नहीं होता। फसल यदि किन्हीं कारणवश खराब होती है तो वह पशुओं के चारों के काम में आ जाती है। बाजरा और ज्वार जैसी फसलें बहुत कम मेहनत में तैयार हो जाती हैं। मोटे अनाज की फसलों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। भारत सरकार ने भी पोषक तत्वों से भरपूर बाजरा और इसके उत्पादन में शामिल कृषि उद्योगों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया था। पौष्टिक आहार और अच्छे स्वास्थ्य को बनाने के लिए भारत को बाजरा क्रांति पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्रायः लोग बाजरे की रोटी बनाकर खाते हैं, पर यदि आपको रोटी पसंद ना आए तो आप खिचड़ी या बाजरे की टिक्की बनाकर भी खा सकते हैं। बाजरे की रोटी में 97% कैलोरी होती है। इसकी रोटी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। मिलेट्स वैसे कोई नया अनाज नहीं है, हम इसे सालों से खाते आ रहे हैं। अब हम फिर से अपने पूर्वजों का भोजन अपना रहे हैं। इसे कहना छोड़कर हमने बीमारियों को आमंत्रण दिया और अब हम उस बीमारी की रोकथाम के लिए पुनः अपने पुराने भोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की

रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां अपना जाल बिछा रही हैं। मधुमेह को तो नया पेंडेमिक कहा गया है। भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 मार्च 2021 को वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था और भारत की इस मांग को विश्व के 72 देशों का समर्थन भी मिला था। भारत में मिलेट की स्थिति की बात की जाए तो भारत में लगभग 6 से 7 तरीके के मिलेट उगाए जाते हैं। आंकड़े बताते हैं भारत में वर्ष 2020-2021 में 12 मिलियन टन मोटे अनाजों का उत्पादन हुआ और हमारा देश 41% की हिस्सेदारी के साथ विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। आंकड़े भी बताते हैं हमारा देश मोटे अनाज के उत्पादन में 80% का हिस्सा है। देश में सबसे अधिक मोटे अनाज उगाने वाले राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार हैं। हमारे देश में मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है। मिलेट्स का उपयोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। विद्यालयों, महाविद्यालयों, ऑफिसों, मॉलों और सभी जगह जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमको लोग मिल पाएँ वहाँ जाकर हमें स्लोगन से, भाषणों से, स्टॉल लगाकर मिलेट्स के फ़ायदों के बारे में जनता को अवगत कराना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही पौष्टिक अनाज है। मिलेट्स 3-4 महीने की कम अवधि में उगने वाले छोटे दाने वाले गर्म मौसम के अनाज हैं जो घास परिवार का हिस्सा हैं। इन्हें कम उपजाऊ, अच्छी जल निकासी और अच्छी जैविक सामग्री वाली मिट्टी सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है। मिलेट की खेती के लिए ज़्यादा खाद और पानी की आवश्यकता नहीं होती है। मिलेट की खेती के लिए बलुई, दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। बाजरे की फसल के लिए भारी मृदा अनुकूल नहीं रहती। बाजरे की फसल के लिए ज़्यादा उपजाऊ भूमियों की भी आवश्यकता नहीं है। बाजरे की फसल गर्म और शुष्क जलवायु के अनुकूल होती है। बाजरे की फसल के लिए गर्मियों में बुआई के लिए मार्च से मध्य अप्रैल उपयुक्त समय माना गया है। भारत में मोटे अनाज की फसल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा भी अच्छी पहल की जा रही है। मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार ने मोटे अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करा ताकि इसे आम जनता के लिए सुलभ और सस्ता बनाया जा सके। सरकार मिलेट को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों को मिलेट की फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिलेट मिशन योजना की शुरुआत अलग अलग राज्यों में हो चुकी है। झारखंड राज्य में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने भी 5 वर्षों की अवधि के लिए तमिलनाडु बाजरा मिशन लागू करने का प्रस्ताव रखा है। तमिलनाडु सरकार के अनुसार बाजरा उत्पादकों को 100 समूह बनाए जाएंगे तथा उनके प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बाजरे के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए रागी और बाजरे की सीधी खरीद की जाएगी। उन्हें उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध कराया जाएगा। बाजरे से बने खाद्य पदार्थों को सरकारी संस्थानों और शिक्षण संस्थानों के छात्रावासों में शामिल किया जाएगा। मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। 140 से अधिक देशों में भारत के दूतावास 2023 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उत्सव, प्रदर्शनी, सेमिनार, वार्ता, पैनल चर्चा के साथ साथ खाद्य पदार्थों के आयातक और स्थानीय रेस्टोरेंट आदि में भाग लेंगे। इसके अलावा बाजरा G20 बैठकों का भी एक अभिन्न हिस्सा है। इसके तहत प्रतिनिधियों को इसे चखने, किसानों से मिलकर संवादात्मक सत्रों के माध्यम से बाजरा को लेकर अनुभव प्रदान किए जाएंगे। मिलेट की पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बोनी करने के तुरंत बाद एट्रोजीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर 400-500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। बाजरे की फसल में नाइट्रोजन की कमी होने पर यूरिया देना चाहिए। बाजरे की फसल में अच्छी बारिश के साथ यूरिया देना चाहिए। बाजरे की फसल के लिए बलुई दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 और 7.5 के बीच होना चाहिए। बाजरा एक वर्षाधारित फसल है, इसलिए इसे पानी सिंचाई की कम ही ज़रूरत होती है। जब वर्षा ना हो तब फसल

0: सिंचाई करना चाहिए। मिलेट की खेती के लिए ऐसी जगह चुनें जहां अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी आती हो। जिस खेत में मिलेट की बुआई करनी हो उस क्षेत्र में खेत की मिट्टी बनाने के साथ ही उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक रखें। मिलेट के हर बीज को कम से कम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। बीजों की क्यारियों के बीच कम से कम 12 इंच का फासला होना आवश्यक है। मिलेट्स या मोटा अनाज बोने का उपयुक्त समय 15 जून से 15 जुलाई है। जून में अच्छी वर्षा होने के अवसर पर बुआई कर देनी चाहिए। यदि वर्षा में देरी हो या लगातार वर्षा हो रही हो तो सीधी बुआई नहीं करना चाहिए। पौधे तैयार कर मुख्य खेत में रोपित किए जा सकते हैं। बाजरे की फसल के लिए शुष्क एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी वृद्धि और विकास के लिए 28 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। श्री अन्न की खेती के लिए किसानों के लिए एक शानदार अवसर है। कम लागत, कम पानी और अधिक लाभ देने वाली यह फसल न केवल किसानों की आय बढ़ा सकती है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बना सकती है। अगर सही तकनीकों का प्रयोग किया जाए तो श्री अन्न की खेती से शानदार मुनाफा कमाया जा सकता है। कई लोग मिलेट्स को पचा नहीं पाते क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है जो पचने में समय लेता है, तो हमें कम मात्रा में मोटे अनाज की शुरुआत करना चाहिए। इससे हमारा शरीर मोटे अनाज को पचाने में सहायक हो जाएगा। मिलेट्स के उत्पादन में भारत अव्वल नंबर पर है। इसमें कोई एक शक की बात नहीं कि सरकार और जनता के प्रयासों से हम मिलेट्स की पैदावार खपत दोनों अच्छे से बढ़ा लेंगे। हमें मिलेट्स के फायदों को नज़रअंदाज ना करते हुए अपने भोजन में इसे शामिल करना चाहिए। तो आइए हम मिलेट को अपने भोजन का अहम हिस्सा बनाते हैं और अपने स्वास्थ्य को और अधिक बेहतर बनाते हैं। क्योंकि सुपर फूड और श्री अन्न कहा गया है तो बेशक यह भोजन अमृत तुल्य है।
1: अभी सुनी मिलेट्स की खेती से लाभ विषय पर पुनः प्रसारित वार्ता। जानकारी दे रही थी बहन सेतु शर्मा। न अब सुना माधुरी शर्मा, न साथी न को गायल यो निमाड़ी लोकगीत।

भाई बहनोनी, अब आपको मौसम की जानकारी दे देवाई। आज सूर्योदय हुयो प्रातः 5:41 पर, न सूर्यास्त हुयो शाम 7:02 पर। आज का दिन को अधिकतम तापमान 37°C रहो, न रात को न्यूनतम तापमान 30°C रहना की संभावना छे। ये तो थी मौसम की जानकारी। न अब एकारू निमाड़ी लोकगीत सुनान, जेखा गायोज ओम प्रकाश बाम ने, न साथी न ना।

भाई विन्नोनी, अब समय छे कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछा गया प्रश्न को उत्तर बताने को। तो आज को हमारो प्रश्न थो रजत फाइबर क्रांति को संबंध कीना उत्पादन से छे। न एक उत्तर छे रजत फाइबर क्रांति को संबंध कपास उत्पादन से छे। न इना उत्तर का साथ ज हमारा कार्यक्रम को समय भी यहाँ पूरा हो। तो आज्ञा देव आपकी बहन वाणी महोदय का राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हवा महल में आइए आज सुनते हैं गंगा प्रसाद माथुर की लिखी और निर्देशित नाटिका मूड।
1: हाय हाय तोड़ डाल, अरे तेरा सत्यानाश है, सारा दूध बह गया। हट हट हट।
2: ओ हो हो, क्या शोर मचा रखा है। अरे भाई शन्नो, ए शन्नो, हद हो गई। एक घंटे से कोशिश कर रहा हूँ मगर चार लाइन नहीं लिख सका। मचाल है कि कोई काम इत्मीनान से करने दिया जाए। दो घड़ी की शांति मैसर नहीं है इस घर में।
1: शांति शांति शांति, ये भी कोई घर है जहाँ हरदम मरगट का सा सन्नाटा छाया रहता है? जरा कहीं खटका हुआ कि परले
2: आए। शन्नो
1: शन्नो नहीं, शांति शांति है मेरा नाम, समझे?
2: अरे समझ गया।
1: क्या समझ गया?
2: अरे यही कि तुम्हारा नाम शन्नो नहीं शांति है। और ये
1: क्या? अरे कहते कहते रुक क्यों गए? और क्या?
2: कुछ नहीं, बस यही कि हमारे घर वाले भी कैसे कैसे नाम रखते हैं, सुनते ही हंसी आती है।
1: क्या मतलब?
2: अरे मतलब यही कि जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता उसका नाम रखा जाता है नैन सुखलाल, और जो सारी जिंदगी एड़ियां घिस घिस कर मरता है उसका नाम होता है चैन सुखदास। कुछ समझी?
1: मैं कुछ नहीं समझी।
2: अब देखो ना, मेरा नाम है अमीर चंद, है ना?
1: हाँ हाँ है।
2: और तुम्हारा?
1: शांति
2: शांति शांति और अमीर चंद।
1: इसमें हंसने की क्या बात है जी?
2: अरे हंसने की बात नहीं है तो और क्या है। अब देखो ना, ना तुम मैं अमीर हूँ और ना तुम। खैर छोड़ो, मेरा नाम अमीर चंद है ना, मगर जेब में भुनी भांग भी नहीं। मेरा नाम होना चाहिए था फकीर चंद या गरीब चंद। और तुम्हारा?
1: मेरा?
2: तुम्हारा नाम अगर शांति देवी की जगह क्रांति देवी होता तो कितना जचता।
1: हाँ हाँ ठीक है, ना जाने तुम कवियों को क्या बैर होवे है अपने घर वालों से। कितना ही अच्छा नाम रखे माँ बाप, मगर ये उसे बदल कर ही छोड़ेंगे। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे क्या ये बताओ कि चीख चीख कर आसमान को क्यों सर पर उठा रहे थे?
2: मैं चीख रहा था? भाई वाह, ये भी खूब रही, उल्टा चोर कोतवाल को डांट।
1: आए लो, सुना इनकी बातें, अब मैं चोर भी हो गई। और आपको देखो, बड़े आए हैं कोतवाल बनकर, सुबह से शाम तक दफ्तर में लोहा कूटते हैं और समझते हैं अपने आप को कोतवाल।
2: शन्नो शन्नो, मेरा मतलब है शांति जी, लगी फिर तुम वही उल्टी सीधी बातें।
1: उल्टी सीधी की क्या बात है, नहीं पीटते रहते तुम दिन भर दफ्तर में लोहे से लोहा?
2: अरे ठीक है ठीक है ठीक है, तुम एक टाइपिस्ट को लोहा कूटने वाला कहकर मुझे चिढ़ा सकती हो, मगर देख लेना देख लेना, एक दिन इसी टाइपिस्ट के नाम का साहित्य की दुनिया में तहलका मचा होगा।
1: हा, हा, हा।
2: आज के इस लोहा कूटने वाले का लोहा सारे संसार को मानना पड़ेगा, समझी? मगर छोड़ो, तुम क्या समझोगी, भैंस के आगे भीम बजाने से भी क्या फायदा है। अब तो तुम भगवान के लिए यहाँ से जाओ और मुझे कुछ लिखने पढ़ने दो।
1: अजी लिखो खूब, काले करते रहो कागज। मैंने कौन सी तुम्हारी कलम पकड़ रखी है? हाँ नहीं तो, एक तो खुदा वास दी, उस पर कभी मुझे चोर बना रहे हैं तो कभी मुझे भैंस।
2: ओहो, बड़ी गलती हो गई शांति देवी जी, जो मैंने तुम्हें आवाज दी, अब मुझे उसके लिए माफी दे दो, मेरा मूड खराब मत करो।
1: हाँ हाँ मैं तो जानू हूँ मुझसे बात करने में तुम्हारा मूड खराब ही होता है। ओ, पर कान खोल कर सुन लो, मेरे भी काले कुत्ते ने नहीं काटा कि बेकार मैं तुमसे अपने भेजे के ठीकरे करूंगी। मैं जा रही हूँ पड़ोस में धनों की माँ के पास, तुम बैठे रहो इन कागजों में सर दिए।
2: हाँ, हाँ बाबा जाओ, जरूर जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सुनो।
1: कहो क्या है, अब क्या बात है?
2: अरे मेरी कोई चिट्ठी विट्ठी तो नहीं आई?
1: नहीं। अरे हाँ याद आया, मेरे पिताजी के पास से एक आदमी आया था।
2: तुम्हारे पिताजी के पास से?
1: जी हाँ, हमारे गांव से।
2: अरे आया होगा, मुझे इससे क्या मतलब है, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरी कोई चिट्ठी तो नहीं आई।

0: तुम भी अजीब हो, कहो खेत की तो सुना खलियान की।
1: खलियान का क्या जिक्र है जी, मैं भी तो खेती की बात कर रही हूँ।
0: खेत की बात क्या मतलब?
1: पिताजी ने कहला भेजा है कि आजकल चने की फसल है, खेती लहला रही है, दो चार रोज के लिए गांव आ जाओ और खेतों से ताजे ताजे चने तोड़कर खाओ।
0: खेतों से ताजे ताजे चने तोड़कर खाओ, वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। अरे तुम्हारे पिताजी ने क्या मुझे बैल भैंस बकरा ऊंट समझ रखा है कि खेत खेत चने चरता फिरूं मैं?
1: अरे मैं कहती हूँ आपको खेतों में चने तोड़कर खाना अच्छा नहीं लगता?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे खेतों और चनों से कोई दिलचस्पी नहीं है। बख्शो मुझे, मुझे लोहे के चने ही चबाने दो। अरे मेरी किस्मत में तो यही लिखे हैं।
1: आपको तो हर वक्त अपनी किस्मत का ही रोना रहता है। खैर आप जाएं या ना जाएं, मैं तो जरूर जाऊंगी, वरना पिताजी नाराज हो जाएंगे।
0: शौक से तुम जरूर जा सकती हो।
1: और हाँ, मुझे याद आया, पिताजी ने उस आदमी के हाथ असली घी की एक हांडी और ताजे गुड़ की दो भेलियां भी भेजी हैं।
0: ओहो, मैं कहता हूँ तुम्हारे पिताजी का इरादा क्या है, आखिर चाहते क्या है वो? मुझे बनिए की दुकान खुलवानी है जो रोज रोज ये असली घी और गुड़ भेजते रहते हैं।
1: इसमें क्या बुरी बात है?
0: बात बुरी हो या भली हो इससे बहस नहीं है, पर उन्हें लिख दो कि मैं असली घी खाने का आदी नहीं हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ वनस्पति घी खाया है और मरते दम तक यही खाता जाऊंगा, असली घी भेज भेज कर मेरी आदत खराब न की जाए। असली घी खाने से मेरा तो गला खराब हो जाता है, ये गुड़ की भेलियां, अरे तौबा तौबा, उनकी तरफ देखने से तो मुझे मतली आने लगती।
1: हाय हाय, इतना अच्छा गुड़ तुम्हें कभी नसीब भी हुआ है? जरा चलकर तो देखो जी, तुम्हारे शहर में तो ढूंढे से भी नहीं मिलेगा इतना अच्छा गुड़।
0: अरे मेरा दिमाग खराब नहीं है श्रीमती जी के शहर में मैं जाकर गुड़ ढूंढता फिरूं।
1: ओहो, तुम तो चौमुखे चलो हो जी, मैंने कब कहा कि बाजार में जाकर गुड़ ढूंढो, मैंने तो एक बात कही थी, पर तुम तो लगे है लड़ने को ही बैठे हो। ना जाने पिताजी की भी क्या ममता की रग फड़के हैं जो तुम जैसे नाशुक्रों के लिए इतनी अच्छी चीजें भेजते हैं।
0: भगवान,
1: अब उन्हें कोई कैसे समझाए कि उनकी मोहब्बत की यहाँ पर यह कदर होती है।
0: अब ये शुरू हो गए ना टसवे बहने। अरे उनकी मोहब्बत से कौन कमबख्त इनकार कर रहा है, लेकिन मोहब्बत जाहिर करने के लिए ये असली घी, ये ताजा गुड़, ये तिल के लड्डू, गन्ने के रस की खीर, मैं कहता हूँ इन सब चीजों की क्या जरूरत है। अरे सच कहता हूँ शन्नो रानी, तुम्हारे पिताजी के लिए मेरे दिल में जो इज्जत है, जो एहतराम है।
1: बस, मैं सब जानती हूँ, बंद कीजिए ये किस्सा नहीं तो।
0: हाँ, मेरा भी यही ख्याल है श्रीमती जी, कि इस किस्से को यहीं खत्म कर दिया जाए। क्यों खामखा मेरा भी मूड खराब हो और तुम्हारा भी?
1: देखो जी, एक बात आज तुमसे मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, ये तुम अपना मूड चाहे खराब करो चाहे अच्छा, पर मेरे मूड के खराब होने की बात मत किया करो।
0: मूड?
1: भगवान ना करे कि मेरा मूड खराब हो।
0: मूड? अरे मूड नहीं शन्नो रानी, मैं मूड की बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम मूड को क्या समझो? अरे अगर ये समझ लेती कि मूड क्या चीज है तो अच्छे ही दिन ना होते।
1: अजी नहीं समझती हूँ तो समझा दो ना, अगर पढ़ी लिखी नहीं तो क्या, इतनी कम अकल तो नहीं हूँ कि कोई चीज समझाई जाए और मैं समझ भी ना पाऊँ।
0: अच्छा, अच्छी बात है, तो बैठो आज तुम्हें समझा ही दूं कि मूड क्या होता है।
1: हाँ हाँ, समझाओ कि मूड क्या होता है।
0: मूड मेरा मतलब है, मूड दिमाग की वो स्थिति होती है कि अगर वो बिगड़ जाए तो।
1: अजी यही तो मैं कह रही थी, मूड दिमाग के बिगड़ने का अंग्रेजी नाम है। तुम जिसे अंग्रेजी में मूड खराब होना कहो, हम उसे अपनी भाषा में मूड बिगड़ना कहें।
0: नहीं नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, तुम पूरी बात तो सुनती नहीं हो। मूड को अगर आसान और सरल शब्दों में तबीयत का रुझान या मन की वो स्थिति कह सकते हैं कि जब हम एकाग्रचित होकर अपने मन को बड़ी लगन और शौक के साथ किसी एक कार्य विशेष की ओर केंद्रित कर लें।
1: ओहो,
0: अब जैसे फर्ज करो तपती दोपहरी में हम तुम ऊपर बरसाती में बैठे हो, मैं तुम्हें एक टक निहार रहा हूं और तुम पसीनों में तर बतर बैठी अपनी धोती के पल्ले से हल्के हल्के अपने को हवा कर रही हो, तभी मैं कहूं शन्नो जी तुम इस वक्त मुझे बड़ी लुभावनी लग रही हो, जी चाहता है तुम्हारी पेशानी पर चमकने वाले पसीने के इन पिल्लौरी मोतियों की माला गूंथ कर तुम्हें पहना दूं। तुम्हारे पल्लू के हिलाने से जो भीनी भीनी हवा निकल रही है, इसमें आओ हम तुम मुड़कर आसमानों को छू जाए, तो जानती हो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि मैं इस वक्त मूड में हूं, रोमांटिक मूड।

0: अपन समझदार आदमी तुम्हारी बातें सुनकर नहीं कह देगा कि इनका मूड फिर गया है।
1: ओ, ओ, अभी तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा साथ रहा तो जरूर एक दिन ये मूड फिर जाएगा। जाओ बाबा जाओ, तुम नहीं समझ सकोगी कि मूड क्या होता है। मैं हारा तुम जीती महारानी।
0: मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम कुछ समझा ही नहीं सकते हो। रही बात मूड फिरने की, वो तो भगवान ही जाने है कि किसका मूड फिरेगा, तुम्हारा या मेरा। पर तुम अपना मूड अच्छा करते रहो, मैं तो कुछ दिन के लिए अपने पिताजी के पास गांव जाकर रहूंगी।
1: हाँ जरूर जाओ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है श्रीमती जी।
0: पर खाली हाथ थोड़े ही जा सकूं हूँ, कुछ रुपए पैसे का भी तो बंदोबस्त होना चाहिए। लाओ निकालो रुपए, मैं आज ही चली जाऊंगी।
1: लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है श्रीमती, यही कोई बस 5-7 रुपए पड़े होंगे, इसमें पूरा महीना निकालना है।
0: ये तो मैं जानती हूँ, मेरे नाम के तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं होते, पर अगर मुझे भेजना है तो इंतजाम करना ही होगा।
1: इंतजाम मैं सब कर दूं, लेकिन तुम करने दो तब ना। अब सुबह से बैठा हूँ, एक लाइन नहीं लिख सका। अरे अगर तुम मुझ पर कृपा करो भवानी, तो रुपयों के ढेर लगा दूं।
0: अच्छा, तो क्या जो तुम लिखने जा रहे हो उसके रुपए मिलेंगे?
1: जी हाँ, वरना मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है जो कागज काले कर रहा हूँ।
0: अच्छा तो लो, मैं जाती हूँ, तुम लिखो, पर जब रुपए मिले तो मुझे गांव जरूर भेज।
1: अरे जरूर भेज दूंगा, जरूर भेज दूंगा, लेकिन इस वक्त तो जाओ यहाँ से।
0: जाती हूँ जाती हूँ, पर हाँ, कब तक आएंगे रुपए, कब तक भेजोगे मुझे गांव?
1: अरे बस जरा एक पब्लिशर फंस जाए।
0: ये कब तक फंसेगा तुम्हारा पब्लिशर?
1: पब्लिशर बस ये उपन्यास पूरा हो जाए, समझ लो पब्लिशर।
0: कब तक पूरा होगा ये उपन्यास?
1: बस बस बस, शुरू होने की देर है, पूरा हुआ समझो।
0: पर कब शुरू करोगे?
1: अरे कोई अच्छा सा थीम मिल जाए तो शुरू कर दूंगा।
0: पर ये अच्छा सा थीम कब तक मिलने की उम्मीद है तुम्हें?
1: थीम की बात तो बस वही मूड पर है शन्नो रानी, जब जरा मूड आया के थीम सूझा।
0: मूड फिर वही कमबख्त मूड।
1: अरे मूड नहीं शन्नो जी, मूड मूड।
0: मैं सब जानती हूँ, जिसे तुम अंग्रेजी में मूड कहो हो उसे हम अपनी भाषा में मूड मूड कहते हैं।
1: हो, अरे अब तुम्हें कैसे समझाऊं?
0: अजी बस समझा लिया, जो बात तुम खुद नहीं समझते हो मुझे क्या समझाओगे। अच्छा मैं चली रसोई में, वरना कहोगे मूड खराब।
1: अरे हाँ, जाओ वरना सचमुच मेरा मूड खराब हो जाएगा।
0: मूड नहीं मूड।
1: अरे हाँ बाबा, मूड मूड मूड, तुम जीती मैं हारा, मूड नहीं मूड।

मूड, गंगा प्रसाद माथुर की लिखी और निर्देशित ये नाटिका अभी आप सुन रहे थे। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना और ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: डगर विकास की। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के संदर्भ में। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ई विद्या योजना डिजिटल शिक्षा की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न डिजिटल और दूरस्थ माध्यमों के जरिए छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। भारत सरकार द्वारा पीएम ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत 30 मई 2020 से की गई थी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का मुख्य लक्ष्य देश के सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही पीएम ई विद्या में पारदर्शिता बढ़ाते हुए कम संसाधनों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डीटीएच और टीवी चैनलों के माध्यम से, साथ ही ऑनलाइन रूप से देश के सभी विद्यार्थियों तक सुलभ रूप से पहुँच रही है। श्रोताओं, क्या है पीएम ई विद्या योजना, इस संदर्भ में जानकारी देती हुई आप हैं छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में पीएम ई विद्या की प्रभारी और माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी की एचओडी डॉक्टर अमिता अर्जरिया।
1: 20 सितंबर 2004 को एजुसेट एक सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा शहर का बच्चा एक साथ जुड़कर एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके स्थापित होने के बाद दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाना संभव हो गया। जो पहाड़ी इलाके के बच्चे थे, जहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है और पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ते, तो इस सैटेलाइट के छोड़ने के बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के कोर्स हुए और टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे वो स्लाइड बनाते हैं, कैसे पोर्टल पे डालते हैं, कैसे दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को जोड़ते हैं। तो ये 2004 में चालू हो गया था और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भारत में इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हम नरोरा एकेडमी भी गए थे, जहां पर हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया था कि कैसे सैटेलाइट को अपन मटेरियल देते हैं, कैसे फोटो खींचते हैं, फिर कैसे टेप करते हैं, फिर कैसे दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं। और जिससे उसके आ जाने के बाद बहुत सारे स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब आपस में जुड़ गए। जिस प्रकार चिकित्सालयों में और न्यायालयों में आजकल सुविधा हो गई, उसी प्रकार 2000 के बाद, एजुसेट के बाद, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति आ गई थी। उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि कम समय में, कम लागत में बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए। इसी शिक्षा के बाद 17 मई 2020 से एक और प्रोग्राम जोड़ा गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को विश्वविद्यालयों को, स्कूल को संचार माध्यम के द्वारा जोड़ा जाए, रेडियो के द्वारा, भाई सैटेलाइट के द्वारा, रेडियो रहते हैं, टीवी और मोबाइल, इनसे जोड़ा गया, जिससे जिनके पास सैटेलाइट है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास टीवी है, जिनके पास रेडियो है, उन सारे माध्यमों से बच्चे जुड़ सके। इसका मेन उद्देश्य था कि बच्चे को, मान लो वो अनुपस्थित है तो उसको गृह कार्य भी प्राप्त हो सके, बच्चा नहीं जा पा रहा किन्हीं कारणों से, तो उन बच्चों को बिना जाए वो शिक्षा घर से प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल में बैठा सबसे बाद का कोने का विद्यार्थी है और शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास साधन है, ना उनके पास लाइट है, तो वो कैसे शिक्षा करेगा, कैसे ग्रहण करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति का, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस माध्यम से समस्त विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। आज भारत का दूरस्थ का विद्यार्थी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे एससी एसटी का हो, अगर उसके पास बड़े संसाधन नहीं है तो मोबाइल की सहायता से वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वयं पोर्टल स्थापित किया गया है उसमें क्रेडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, हर क्षेत्र का उसमें ज्ञान है, बड़े बड़े प्रशिक्षित लगे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लगे हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं जो अपनी वेबसाइट डाले हुए हैं, और हर विषय का, हर भाषा में, सबसे बड़ी बात हिंदी इंग्लिश में तो था ही, इसके अलावा हर विषय का।

0: ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी में झेपता है या संस्कृत में या मलयालम में, वो स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है कि भारत में बोले जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं को सेंट्रलाइज किया गया है। इंग्लिश का मेन सिलेबस है, उससे हर भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है, जैसे हर क्षेत्रीय भाषा का विद्यार्थी उसको प्राप्त कर सके। दूसरी चीज वैल्यू एडिड कोर्स बनाया गया है। वैल्यू एडिड कोर्स का मतलब है मूल्य आधारित शिक्षा। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी मूल्य है, कुछ भी बनाना आता है, चपाती बनाना आता है, बहुत अच्छा पराठा बनाना आता है, कोई भी कौशल है, उस कौशल के आधार पे वो शिक्षा ग्रहण करे और सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का ऋण देती है जिससे वो प्रशिक्षित होता है, उसे मेंटर मिलता है। प्रशिक्षण के बाद वो उस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक नई चीज बनाता है और उसका उसे मूल्य पता रहता है। उसका वैल्यू का मतलब मूल्य आधारित, तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत वो पेटेंट करा सकता है, GI टैग करवा सकता है, कुछ भी कॉपीराइट करा सकता है। तो ये अभी उसको भी स्वयं पोर्टल से जोड़ा गया है कि जिन विश्वविद्यालयों में BAC के वैल्यू एडिड कोर्स के टीचर्स नहीं है या उतनी सुविधा नहीं है, तो स्वयं पोर्टल में अगर बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है तो उस विषय से संबंधित ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है किसी भी भाषा में।
1: जी मैडम, हम इसमें एक और चीज पूछना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ई विद्या योजना है, इसमें कुछ और माध्यम जुड़े हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई होती है, कुछ पोर्टल और भी जुड़े हैं।
2: हाँ। इसमें कुछ और माध्यम भी जुड़े गए हैं।
0: हाँ, एक है दीक्षा पोर्टल, PME विद्या के मुख्य घटक है दीक्षा पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को ई बुक मिली है, वीडियो मिले हैं, क्विज है और बहुत सारी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई कि कैसे बच्चों को कभी भी कोई भी जानकारी किसी समय वो अंदर खोज सकते हैं और उन्हें प्राप्त हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे IIT है, JEE है, NEET है, PSC है, सारी भाषाओं में बहुभाषीय माध्यम में अध्ययन सामग्री को इंटरनेट से प्राप्त कर सकता है, पढ़ सकता है। ये सबसे ज्यादा उपयोगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। PME विद्या के मुख्य घटकों के द्वारा पूरा भारत एक हो गया है और पूरा भारत जब एक हो जाएगा तो विकास की दर भी एक ही दशा में बहेगी और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा।
1: श्रोताओ, PM ई विद्या योजना में सरकार द्वारा कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल चैनल खोले गए हैं, जिनमें स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट प्रसारण से उन क्षेत्रों में बच्चों के लिए विशेष रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो किसी कारण से कक्षा में नहीं पहुंच सकते और ये शिक्षा काफी प्रभावी भी हो रही है। PM ई विद्या योजना के क्रियान्वयन और विद्यार्थियों के लिए सुलभ सुविधाओं के संबंध में हमें जानकारी देते हुए आप हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के PME विद्या के प्रभारी वरिष्ठ शिक्षक नीरज वाजपेयी।
3: ये माननीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक बृहद स्तर का व्यापक डिजिटल शिक्षा उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा के छात्रों और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ युवाओं को TV, इंटरनेट और रेडियो के माध्यम से हाई क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रदान करना है, जिससे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें मिल सके। और इसको संचालित करने के लिए हमारे भारत सरकार के अंतर्गत जो IT मंत्रालय है और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इन सबके समन्वय से प्रमुख रूप से कई पोर्टल्स चल रहे हैं, जिसमें से दीक्षा पोर्टल्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये दीक्षा पोर्टल है, इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान है। दीक्षा पोर्टल में स्कूल शिक्षा के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वन नेशन और वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। भारत के सभी राज्यों और NCERT द्वारा तैयार की गई जितनी भी पुस्तकें हैं और उन सारी पुस्तकों की डिजिटल सामग्री उसमें अपलोड है। अभी कोविड काल के दौरान जब हम स्कूलों को बंद पा रहे थे, तो हमने इसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्वयं से 16 प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण इस दीक्षा पोर्टल पे दिए हुए थे। और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इसमें जो पुस्तकें हैं, NCERT की सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, इसका शॉर्ट वर्जन है दीक्षा। तो ये कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बड़ा प्लेटफॉर्म जो पूरे भारत में दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा की बांट जो रहे छात्रों को, ये एक बहुत बड़ा सुगमता प्रदान करता है। शिक्षा से वंचित और बहुत सुदूर स्थित व्यक्ति भी जहां तक इंटरनेट पहुंच जाता है, तो ये दीक्षा पोर्टल उसको डिजिटली लर्निंग प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा टूल है।
1: श्रोताओ, PM ई विद्या योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभार्थी

0: कुछ विद्यार्थियों से उनके अनुभव हमने जाने। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के माध्यम से स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपने शिक्षा को पंख दे रहे हैं हमारे युवा। इस योजना के लाभों के संदर्भ में हमें जानकारी देते हुए आप हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से एमए के छात्र सौरभ द्विवेदी।
1: कई बार ऐसा होता था कि मुझे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता था। कुछ थिंकर्स ऐसे आ जाते थे कि जिनको मुझे बुक में भी उनका मतलब कि क्लियर कट नहीं मिलता था कि क्या उनने रिसर्च की है। मुझे रिसर्च में प्रॉब्लम हो जाती थी कि उनने क्या की है, क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में लिखना है। तो इसके लिए मैंने स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं जब स्वयं पोर्टल पर जाता हूँ तो मुझे जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैटर चाहिए होता है तो मैं उस पर सिर्फ टॉपिक का नाम डालता हूँ, उसमें पार्ट बाई पार्ट आ जाता है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कई जगह ऐसा मिलता है गूगल पे जैसे हम लोग ट्राई करते हैं तो उसमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, दो तीन लाइन मिलेंगी फिर यहाँ वहाँ का दे देंगे। पर स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हम टॉपिक का नाम डालेंगे जैसे ही तो उसमें हमें उसकी प्रस्तावना, उसके उपसंहार, उसकी विभिन्न प्रकार की हेडिंग, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी आलोचनाएं, हमें सभी चीजें स्वयं पोर्टल पर क्रमबद्ध तरीके से मिल जाती है जिसको पढ़ने में और समझने में काफी सरलता होती है। और सबसे अच्छी बात एक मुझे ये लगी कि स्वयं पोर्टल की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, एक बार पढ़ने में ही वो हमारे माइंड में आ जाती है।
0: सौरभ आपसे जानना चाहेंगे स्वयं पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और जो नए विद्यार्थी इससे जुड़ना चाहें या जो भी हमारे नागरिक स्वयं पोर्टल से जुड़ना चाहें कैसे जुड़ सकते हैं?
1: जैसे स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आजकल देखिए सभी के पास एंड्रॉइड फोन तो होता ही होता है, लैपटॉप हो तो और अच्छी बात है। यदि नहीं है तो हम अपने एंड्रॉइड फोन में गूगल ओपन करेंगे या गूगल क्रोम ओपन करेंगे, उसमें जाकर हम स्वयं पोर्टल लिख देंगे सीधा, उसकी जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना है। उसको जैसे ओपन करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है लॉग इन का। यदि आप पहले से स्वयं पोर्टल पर एनरोल हो तो आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। यदि आप नए यूजर हो या पहली बार आईडी बना रहे हो तो उसमें ऑप्शन आता है साइन इन का, तो उसमें हम साइन इन अपना मोबाइल नंबर ईमेल डालकर हम उसमें साइन इन कर सकते हैं और अपने पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। उसमें हमें एक आईडी पासवर्ड मिल जाती है, कभी भी कहीं भी किसी भी फोन में उसको लॉगिन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर से उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो भी हमारे डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है, हम उसे क्लियर कर सकते हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो सौरभ पीएम ई विद्या के अंतर्गत आपने स्वयं पोर्टल की बात की है, कैसे आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो रहा है, आपको क्या क्या लाभ हो रहे हैं पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से?
1: पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से मुझे लाभ, सबसे ज्यादा लाभ ये हो रहा है कि मैं कहीं पर भी, जैसे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी में किसी काम से आया हूँ, मैं बुक नहीं लिया हूँ, मुझे पढ़ना है तो मैं तुरंत अपने फोन में लॉगिन करके स्वयं पोर्टल में आईडी लॉगिन करके कुछ भी पढ़ सकता हूँ। स्वयं पोर्टल पर हम जाते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर मिल जाता है, तो इससे हमें प्रॉफिट है कि हम कहीं भी कभी भी पढ़ लेते हैं और एग्जैक्ट आंसर मिलता है।
0: विद्यार्थियों के लिए कैसे मददगार है उनकी पढ़ाई में या उनके और आगे बढ़ने में हमारा पीएम ई विद्या और स्वयं पोर्टल?
1: विद्यार्थियों के लिए पीएम ई विद्या बहुत ही मददगार है। पीएम ई विद्या के माध्यम से कई पोर्टल भी हैं इनके, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा मानता हूँ जो मैंने अभी तक उसका उपयोग किया है स्वयं पोर्टल है। स्वयं पोर्टल में हमें मददगार ये है कि ना तो उसमें कोई हमारा पैसा लग रहा है अलग से, ना कोई बुक लेनी है, ना बैग में कोई वजन हो रहा है और हम कहीं भी डिजिटल रूप से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है कि हम डिजिटलता को अपनाएं, हम डिजिटल हों, हम जितने ज्यादा डिजिटल होंगे उतना ही अच्छा रहेगा।
0: श्रोताओ पीएम ई विद्या योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसमें और अधिक समावेशी शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना पीएम ई विद्या योजना से जुड़ें और अपने सपनों को पंख दें। इसी के साथ ही डगर विकास के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब संपन्न हुआ। सहयोगी राजेंद्र अहिरवार और प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति, योगदान आकाशवाणी छतरपुर का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी
1: श्रोताओं, समय एक छोटे से अंतराल का, शेष कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।

فیروزی. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की. हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में

0: जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाए गए

0: खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
1: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमा की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के

0: साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले

0: विषयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: ही कहना,
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन,
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं, लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में कार्य करते थे।

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है दोस्तों। फिल्में जो भी हों, लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल कहा गया था।

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

0: 1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।
1: मैं

विराज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।

1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।

राज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्त।

राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में ली।

वो तो यकीनन इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताजा बनाए रखेगा।

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से, बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन, तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता रहा सदियों से। सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते।

कहीं कोई आवाज नहीं हुई। कुछ टूटा जरूर, पर बेआवाज। दिल टूटने की आवाज नहीं होती, दिल बेआवाज टूटता है। चेहरों पर नकली मुस्कान का लेबल चिपकाए जीते रहते हैं लोग, एहसास नहीं होने देते कि उनका दिल टूटा है।

कुछ कहना नहीं होता है, न ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था, लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाती हैं, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है।

और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में फर्क होता है।

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने, पर देखो ना, तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़ना और फैलना बेचैन करता है हमें, पर थाम भी तो नहीं सकते हम वक्त को। ये वो मुसाफिर है जिसे बस चलते ही जाना है।

दुनिया की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी

0: राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी

0: एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ooh Myin Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day,

सकती है। कल सुबह की सभा में 5:51 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय हिंद।